0: फतेह। परम सम्मान योग गुरु खालसा साध संगत जीओ, आप संगत वडभागी हो, संध्या समय सतगुरु दे पावन पवित्र सोहने दरबार दियां हाजरियां भरदियां होयां इलाही बाणी दा कीर्तन सरवण कीता है। हुण कथा दा समां होया, चल रिहा लड़ीवार इतिहास, पंचम पातशाह शहीदां दे सिरताज शांति दे सोमे महान परोपकारी सतगुरु धन धन श्री गुरु अर्जन देव महाराज का है। गरीबन वास सतगुरु जी श्री अमृतसर साहिब सरोवर की सेवा करवा रहे हैं। रामदास सरोवर नहाते सब उतरे पाप कमाते, निर्मल होए कर इशनाना गुरपुरा कीने दाना, डिठे सबे थाव नहीं तुद जिहिया, बदोहो पुरख बिधाता तां तू सोहिया, बसदी सगने अपार अनूप रामदास पुर, हर हां नानक कसमल जाए नाय रामदास सर। इस सरोवर की सेवा दे लई बेअंत संगतां सेवा कर रही हैं, गरीब सिख भी ते अमीर सिख भी, उचियां नीवियां सारियां जातियां दे सिख बड़े प्रेम दे नाल सेवा कर रहे हैं। चल रहा प्रसंग गंगा राम दा है। गंगा राम एक ब्राह्मण जाति विचों एक व्यापारी मनुख सी, ते इसने मालवे तो बठिंडे दे इलाके विचों बहुत सारा बाजरा इकट्ठा किया, ते उन्हां नूं गड्डियां ते लद के माझे दे विच वेचण वास्ते आया। क्यों उस वेले मोठ ते बाजरा इधर बठिंडे दे इलाके विच ही वधेरे होया करदा सी, ते इहदे मन दे विच इह इच्छा भी सी भई मैं महंगे मुल वेच के ते मैं मुनाफा प्राप्त करांगा। माझे विच जा के लोगां नूं पुछदा कोई एहो जी थां है, कोई एहो जा शहर है, कोई एहो जी मार्केट है जिथे इको वारी मेरा सारा बाजरा विक जावे। किसे दाने ने कह दिता धन धन श्री गुरु अर्जन देव महाराज सच्चे पातशाह सरोवर की सेवा करवा रहे हैं। उस वेले इस शहर का नाम गुरु का चक कवि जी ने पिछे लिखिया सी, तुसी उत्थे चले जाओ ते उत्थे थोड़ा ये बाजरा बहुत छेती विक सकता है। क्यों उत्थे अठे पैर गुरु का तुट लंगर वरतदा है, ते इह शिक्षा नूं लै के भी उत्थे जा के मेरा बाजरा विक जाएगा। श्री अमृतसर साहिब पहुँचे है धर्मी बंदा सी, ते इन्हें उत्थे जा के गौ दे नाल देखिया किवें गरीब सिख हथी सेवा कर रहे हैं, मायाधारी माया की सेवा दे नाल नाल वह भी टोकरी ढो रहे हैं। इस तरह का सारा सेवा का दृश्य देख के इहदा भी मन श्रद्धा भावना दे नाल लवा लाव भर गया। तो फिर एक दिन ये गुरु महाराज का कौतक सी, संगत ज़्यादा आ गई तो लंगर मस्त हो गया। तो जदों लंगर मस्त होया एक दिन सारी संगत ने कुछ भी नहीं छकिया, सवेर तो लैके पानी पी के सेवा करते रहे। फिर दूजा दिन भी इस तरह ही लंघ गया फाके कड़ाके विच। गंगा राम के मन के ख्याल आया बई मैं व्यापारी बंदा हाँ, इत्थे बेअंत संगतां गुरु घर विच सेवा कर रही ने, क्यों ना मैं जो बाजरा लेके आया हाँ वो भी एक किस्म का अनाज है, तो मैं गुरु घर के लंगर विच दे देवां। लंगर विच गया, जेड़ा लंगर का मुख सेवादार से उन्हों जाके पूछिया भी इत्थे लंगर किवें चलदा है, तो उसने दसिया भी ये संगतां ही रस्ता बस्ता लियांदियां ने, तो संगतां ही लंगर तैयार करदियां ने, तो संगतां ही छकदियां ने। इस ढंग दे नाल गुरु का लंगर चलदा है। फिर ये कहण लगा दो दिन तो संगतां भुखियां ने, कोई इन्हां दे लंगर का प्रबंध? वो कहिंदे आपे वाहिगुरु करेगा। बस जदों इन्नी गल आखी इहदे मन दे विच सेवा दा चाओ पैदा होया। कहण लगा मैं बाजरा लैके आया हाँ, तो जे मैनू तुसीं आग्या दिओ तो मैं लंगर दे विच सेवा कर सकदा हाँ। उसे कहण लगा भी मैं गुरु महाराज नूं पुछ के दस सकदा। उसने गुरु महाराज नूं जाके बेनती की, महाराज की हुक्म है? गुरु महाराज कहिंदे भाई वो व्यापारी बंदा है, उहदे कोलों तोल के लै लवो जिन्ना भी तुसीं बाजरा लैणा। तो गुरु के लंगर दे विच संगतां नूं लंगर तैयार करके छकाओ। तो जदों पहले दिन 100 मण बाजरा गंगा राम ने गुरु के लंगर वास्ते दिता ऐन तोल के, ते फिर दूजे दिन भी लंगर।
1: You're listening to KRPI 1550 Radio, Ferndale, Washington. 1550 KRPI Radio ते चल रहा है Live from Guru Nanak Sikh Gurdwara Sahib, Scott Road, Surrey.
0: पहले ही बचन कह दिता सी, हुण विसाखी दा जोड़ मेला आउण वाला है, ते उदों बेअंत संगतां आउणगियां। जिहड़ा तेरा बाजरे दा जो भी तू मुल रखिया है ते जां तू लैणा चाहेगा वैसाखी दे जोड़ मेले तो बाद दे देवांगे। ये कहण लगा चलो कोई गल नहीं। हुण 500 मणे दा बाजरा गुरु के लंगर विच लग्या सी, वैसाखी दा जोड़ मेला आया, बेअंत संगतां ने दर्शन दीदारे कीते, बेअंत भेटा भी अर्पण हुईयां, ते गुरु महाराज ने फिर गंगा राम नूं सद्या। ते जिहड़े उस वेले दे जथेदार सन, प्रबंधक सन, जिन्हां नूं मसंद कहा जांदा सी, उन्हां नूं गुरु महाराज ने अपने कोल बुलाया ते कहण लगे तुसीं इह गंगा राम दे नाल हिसाब किताब करो। ते फिर उन्हां ने उन्हूं पुछिया भाई दस तेरा किन्ने मण बाजरा सेवा दे विच आया है? ये कहिंदा 500 मण बाजरा मैं सेवा लई दिता है। फिर वो कहन लगे दस किन्नी माया लैनी? इहदे मन दे विच ऐसा प्रेम ते श्रद्धा पैदा हो गई सी, इह कहिंदा मैं मुल नहीं लैणा, मैं कुछ नहीं लैणा, ते मैं समझ लवांगा कि मेरे वल्लों इह सेवा हो गई है, ते मैं नहीं लैणा। हुण गुरु महाराज कहिंदे भाई नहीं, तू व्यापारी बंदा है, तू अपने मुनाफे लई लाहे वास्ते इत्थे आया सी, जिन्नी लोड़ है उस तों वध लै लै। ये कहिंदा नहीं, इहदी परख हो रही सी, कहिंदा नहीं जी मैं कुछ नहीं लैणा। हुण उस गंगा राम दे नाल गुरु महाराज दे नाल जो भी विचार वटांदरा चल रहा है वह प्रसंग कवि जी लिख रहे हैं, ते आप संगतां अगला प्रसंग सरवण करो।

तेरा बंस तपे थम ठार देवे, कीड़ी बन तीरज बन देंदा, हर राक्ष नू हंकारे हुए, हंकारे हुए हर राक्ष नू ओदे पाप दा

दर्शन करके सदके जावा सौ सवारी दर्शन करके सदके जावा सौ सवारी दर्शन करके सदके जा

के खून दे तिलक नाल ही द्वार खुलते हैं। देवदासियां दे अखाड़े बन गए मंदिर, धर्म दे नाते वैश्याले बन गए मंदिर, धर्म दे नाते शराब कबाब दे अखाड़े बन गए मंदिर। उंगल भी नहीं उठ सकती सी क्योंकि सब कुछ धर्म दे नाते होया, राम दे मंदिर काम दे मंदिर बन गए, सदाचार दे मंदिर दुराचार दे मंदिर बन गए। ईश्वर नाम इबादत और उच्चे इखलाक दी थां ते दुराचार आ गया। विदेशियां दे मुंह दे च वी पानी आया, देश दी सारी दौलत देश दा हुसन सब मंदरां दे च सी, सब कुछ नूं छड के वो मंदिर ही लुटते रहे और मंदरां दे चों उन्हां नूं सोने दियां मूर्तियां हीरे जवाहरात प्राप्त होए, देवदासियां दे रूप दे हिंदुस्तान दी असमत प्राप्त होई, इसे नूं ही बन के वो अपने मुल्कां नूं गमन करते रहे और इस तरह ये देश भ्रष्ट होंदा रहा और कमजोर होंदा रहा। तो सुनी पुकार दातार ब्रह्म, गुरु नानक जग माहे पठाया। जब जुल्म होण लग पे और ये जुल्म होना सी हमला आवरां दी तरफों जावरां दी तरफों जरवाणियां दी तरफों और होना ही सी। जिंदगी वाकई एक रास लीला है पर मर्यादा ना रही। गुरु नानक दा जमाना आया, आपने लीला नू मर्यादा दिती, मर्यादा नू लीला दिती। गुरुद्वारे विच भी राग आए संगीत आए पर मर्यादा दे, पदार्थ आए लंगर दे रूप दे पर मर्यादा दे, धन संपदा आई गुरुद्वारियां दे मर्यादा दे रूप दे। पर ये मर्यादा सिर दा बोझ ना होवे, राग दी धुन कीर्तन दे राही, संगीत दी धुन कीर्तन दे राही, ताके जीवन दे च रस बनिया रवे और रस मर्यादा दे च रवे। जैसे पानी दो किनारियां दे बंधन दे चले, जगत दी जीवां दी प्यास बुझांदा होया वो वगदी हुई धारा सागर तक पहुंचती है, पर दो किनारियां दे बंधन तोड़ देवे तो खेतियां डुब के बर्बाद होंदियां ने। सुख दी थां ते उस वगदी हुई धारा तो दुख मिलन लग पैंदा है, वो वगदी हुई धारा बर्बादियां नूं जन्म देंदी है। जीवन दी ए धारा सुख वंडदी होई सुख लैंदी होई अपना जीवन लक्ष्य पूरा करे, परमात्मा रूपी सागर तक पहुंचे, ए दो किनारियां दे बंधन दे चले। और वो दो किनारे गुरु नानक ने बनाए, संतोख ते दया, धौल धर्म दया का पूत, संतोख था रखिया जन सोत, अपने विच संतुष्टि ते दूसरे ते दया। ए उपदेश ए संदेश धन गुरु नानक देव जी महाराज दा, वाकई ए उपलब्धि ते ओही है जो गर्भकाल दे बच्चे दी सी। धन गुरु नानक देव जी महाराज ने मनुख दी दुनिया तो जात पात हटा दिती, मजहब हटा दिता, वर्ण बेख हटा दिते, आश्रमां दा बोझ हटा दिता, भाषा दी वितकरे भी हटा दिते, मुलुक दी तंग दिली भी हटा दिती, सरबत दे भला मनन मंगण दी जाच सिखाई और आख्या सरबत दा भला मंगो, सारा संसार थोड़ा मुलुक है, थोड़ा मुलुक केवल थोड़ा मुलुक नहीं सारा संसार ही थोड़ा मुलुक है, और थोड़े मुलुक दे बंदे ही केवल थोड़े बंदे नहीं सारा संसार साडा भाईचारा है। ऐसा उपदेश संदेश कल युग दे इस अवतारी पुरुष ने जगत दी झोली दे पाया। जैसे बुढ़ा त्रिशनालू होंदा है ते स्याणा भी बड़ा होंदा है, जिंदगी दे बहुते उतार चढ़ा देखण करके उन्हों झूठ बोलना भी आ जांदा है और झूठ उसका चलदा भी है। उम्र दा तकाजा देख के बुजुर्ग है उदी हर गल नूं अगले सही मन लैंदे ने,

बल बावन भायो त्रेते ते मान्यो राम रघुवंश कहायो द्वापुर कृष्ण मुरार कंस कृतारथ कियो उग्र सैन को राज अभय भगतें जन दियो कल युग प्रमाण नानक गुर अंगद अमर कहायो श्री गुरु राज अब चले अटल आद पुरख पुरमायो सतयुग देख बावन बोने अवतार तृतीय दे श्री कृष्ण रंसी द्वापर दे श्री कृष्ण यादव वंशी और कल युग दे धन गुरु नानक देव जी महाराज बेदी वंश दे उजागर हो समय दी रूपरेखा दे भट्ट अवतारा इस तरीके दे नाल मंदे ने और समय का बैरूनी प्रभाव जन्म साखी रिच इन चित्रिया होया है। धन गुरु नानक देव जी महाराज फरमान करते ने बाले नू मरदाने नू समझांदे ने ये युग कैसा है जे बैठा ता आखिए बैठा सत्तर घट जे चलना ता आखिए छार गया सित घट जे मैं चलदा ते कहिंदे ने इते सिर देते छार पा के चला गया मिट्टी पा के चला गया ते जे मैं बैठा रहा ते लोकी कहिंदे ने इते बस सत्तर बैठ के ही बैठा होया सत्तर मल के ही बैठा होया इते सिर्फ बैठा ही रहिंदा जे बैठा ते आखिए बैठा सत्तर घट जे चलना ता आखिए छार गया सिरगत जे बोलांता आखिए बड़बड़ करे बहुत चुप रहांता आखिए ऐस घटना ही मत जी मैं बोलदा ही नहीं खामोशी धारण कर लेना तो कहंदे ने इहदे कोल कुवत गोयाई नहीं है इहदे कोल बोलण दा ढंग नहीं है इहदे कोल अकल ही नहीं है पर जे मैं मौका महल गल करां बातचीत करा तो कहते ने बड़बड़ करता पै बस बोली जाता बोली जाता जे बोला ता आखिए बड़बड़ करे बहुत चुप रहा ता आखिए इस घटना ही मत काई गाल ना मेवने करता ही रखे पत बस दुनिया का कम हो गया निंदा करने और निंदा करन लई बहाने लबने चल रहा है मनुख ले खाक उड़ा के चल रहा है बैठा है मनुख बस बैठा ही रहिंदा है बोले बड़बड़ करदा पै चुप है मूरख है गर्स के निंदा करन दे बहाने इस युग दे जन्म साखी दे कथन अनुसार निंदा चरम सीमा ते है और मनुख कदम कदम दते निंदा कर रहा है और निंदा करन दे बहाने लगता है। धन गुरु नानक देव जी महाराज ते इत्थे तक कहंदे ने कि ऐसी आदत बन गई है इस युग दे च निंदा दी कि हुण इसका कोई इलाज भी नहीं है। औखद सबे की तेन निंदक का दारू ना है निंदा ऐसी जहर है ऐसी कुड़त्तन है जिस नाल मनुख दी जबान इतनी कौड़ी हो गई है इतनी कौड़ी हो गई है। धन गुरु नानक देव जी महाराज कहंदे ने तुम्मी तुम्मा विस अक धतूरा निम फल मनमुख वसें तिस जिस तू चित ना आवे। हे प्रभु मनुख ऐसा

0: निंदक हो गए और उसकी रसना झूठ बोल बोल के इतनी कौड़ी हो गई है, कोई तुम्मा इतना कौड़ा नहीं, निम इतनी कौड़ी नहीं, जहर इतनी कौड़ी नहीं, जिड़ा ओ हिरदा कौड़ा है जिस विच तो नहीं है, ते सिर्फ निंदा ही निंदा है। धन गुरु नानक देव जी महाराज इन फरमान कर देने, दौलत दुनिया वाजे वाज, नारद नाचे कल का भाव, गति सती कह राखे पाओ। इस युग देच मन ते नारद बन गए, ते नारद दा कम की है चुगली, इधर दी उधर, उधर दी इधर। इस दौर विच मनुख दी तर्जे जिंदगी ऐसी बन गई है, महाराज कहने मनुख दा मन नारद है। नारद नाचे कल का भाव, जति सती कह राखे पाओ। ये जत ते सत केड़ी थां ते अपना पैर टिकावेगा, मन ते नारदी होया पे, मन ते चुगल बखील होया पे, मन ते बड़ा परबल निंदक होया पे। ए कलयुग दा प्रताप, समय दा प्रताप, ए धन गुरु नानक देव जी महाराज बैरूनी असर दा जिक्र पे करदे ने। दरअसल गली दे कोई बहुत वड्डी भीड़ होवे और उस विच मनुख फस जाए, तो जिस पासे भीड़ जा रही है उसे पासे ही जाना पैंदा है। मनुख सुतंत्रता दे नाल अपना रस्ता नहीं चुन सकता। इतनी निंदा और इतना निंदक, तो उस विच जीवदिया मनुख निंदक हो जाता है। इतना झूठ और इतने झूठिया की भीड़, इस दे चल के मनुख झूठा हो जाता है। इतने फोके कर्म कांडी और कर्म कांडिया की भीड़, इस भीड़ दे चल के मनुख व्यर्थ दा कर्म कांडी हो जाता है। और एते एक मन दा सुभाव है कि एदे उते अक्सर प्रभाव पैंदा है भीड़ दा। मनुख कहिंदा है इतने सारे मनुख जो चल रहे ने ते गलत किस तरह हो सकते ने। दरअसल बहु गिनती ही गलत हो सकती है। किसी समय महात्मा बुद्ध ने बड़ा कीमती कौल अपने चचेरे भरा दे सामने रखिया सी। आनंद बहुत वड्डी भीड़ दे कोई चंगे मनुख नहीं आंदे और चंगे मनुखां दी कोई भीड़ नहीं आंदी। बहु गिनती ते हमेशा ही गलत होगी। भीड़ हमेशा बुरियां दी आंदी है, नेक ते बहुत थोड़े ही। गिटियां ते पत्थर आम मिल सकते ने पहाड़ा ते, हीरे ते किधर किधरे, संख ते सिपियां सागर दे तट ते भी लग पैंदियां ने, पर मोती ते किधरे किधरे ही उपलब्ध हो सकते ने। किकर ते सारी धरती दे च मिलदा है, पर चंदन दा वृक्ष ते किधरे किधरे, जितने मिकदार दे च कोयला निकलदा है पहाड़ा दी कुख दे चा, उतना सोना नहीं। तो कल युग एक कलेश भरिया युग, और कलेश व्यापक ए दुनिया बड़ी भीड़, तो मनुख दा मन कलेशमयी हो गया। झूठिया दी भीड़ देच झूठा हो गया, निंदकां दी भीड़ देच निंदक हो गया, लोभिया दी भीड़ देच लोभी हो गया है। इस तरह दी भीड़ देच मनुख जी रहे है। नारद नाचे कल का भाव, जति सती कह रखे पाओ। नारद दी तरह मन नच रहे है, चुगल खोर हो गया। इथे जति अपना पैर केड़ी थां ते टिकावेगा, सारी धरती जल रही है। इथे सती केड़ी थां ते बैठना चाहेगा, सारे स्थान गंदे हो चुके हैं। तो ए समय दी रूपरेखा जो प्रभावित कर रही है मनुख दी तर्जे जिंदगी नूं, धन गुरु नानक देव जी महाराज, धन गुरु रामदास जी महाराज, धन गुरु अर्जन देव जी महाराज और भगत रविदास ते कबीर अपने आलमाना ढंग नाल बयान करते ने। पर हुण मानसिक तल ते सतयुग त्रेता द्वापर ते कलयुग दी व्याख्या जो गुरु नानक ते भाई गुरदास ने बयान कीती है इन्हां शब्दां दी व्याख्या मैं पेश करन लगा। और ये आसा दीवार दा श्लोक है और भाई गुरदास जी दी एक पौड़ी जिस विच भाई गुरदास जी कहंदे ने जुग जुग मेर शरीर का वासना बद्धा आवे जाए फिर फेर वटाइए ज्ञानी होए मर्म को पाए। ये कोई आत्म ज्ञानी होवे तो इसनु समझेगा कि समय समय दे नाल ये शरीर बदलता रहा, बार बार जन्म होंदा रहा और जन्म होंदा रहा वासना करके। जितने चिर तक वासना है जन्म चलता ही रहेगा, जन्म मरण उस दिन मिट जाता है जिस दिन वासना प्रार्थना का रूप धारण कर लवे। कहिंदे ने मन ऐसा है या वासना चलेगी या प्रार्थना चलेगी। जिस दिन मन प्रार्थी हो गया और इसके अंदर हर वक्त प्रार्थना चलन लग पई और प्रार्थना दे शुकराना धन्यवाद हे प्रभु तेरा धन्यवाद, उस दिन जन्म मरण दे ए गेट मिट जांदे ने। पर वासना ते चलदी है, अगर वासना पिछले जन्म दे च नहीं सी तो हुण दा ए जन्म भी नहीं हो सकदा। इति वासना बद्धा आवे जाए, भाई साहब भाई गुरदास जी कहंदे ने जुग जुग मेर शरीर का, हर युग दे च ए मेरा मेरू शरीर ए महान शरीर मनुख मनुखी तन बार बार आउंदा रहे। अक्सर पुन ते पाप दोवें बराबर होवन तो मनुख दा अगला जन्म मनुख दा ही आउंदा है। पाप ही पाप होवन पुन ना होवन तो मनुख पछड़ जांदा है, पिछे मुड़ जांदा है। पर ऐसा ते कोई पापी नहीं कोई थोड़े बहुत पुन ना करदा होवे। कबीर सच कह रहे ने पाप पुन दोए बहल बिसाए पवन पूंजी परगासियो। मनुख स्वासां दी पूंजी नाल कुछ पाप खरीदता है कुछ पुन खरीदता है। तो पाप पुन बराबर होण करके मनुख दा बार बार जन्म मनुख दा ही आउंदा है। और करीबन करीबन यही चांस है कि मनुख मर के मनुख होवेगा, क्योंकि पाप करदा है जीवन दी लालसा करके, पुन करदा है इस जीवन तो मुक्त होने वास्ते। पर चूंकि दोवें कर्म बराबर रह जाते हैं तो बार बार मनुखी जन्म उपलब्ध होता है। तर्जे जिंदगी दे तौर तरीके जो बदलते ने, इस तब्दीली नू धन गुरु नानक देव जी महाराज जिस ढंग नाल बयान करते ने मैं अर्ज कर रहा।
1: You're listening to KRPI 1550 Radio, Ferndale, Washington.

एक ओंकार सतनाम करता पुरुष निर्भो निर्वैर अकाल मुहूर्त अजूनी सैभं गुरु प्रसाद हे प्राणनाथ गोविंदे कृपा निधान जगत गुरु हे संसार ताप हरणे करुणा

कोई शिकार है, कोई पार्किंग लवा रहा, सेवा है, जां फिर पंडाल विच दीवान विच बह के आपां सिमरन करने, तीजा होर कोई काम नहीं है। इत्थे गुरु कोल बहना है, इत्थे जाच सीखनी है, सेवा किवें करनी है, जाच सीखनी है, सिमरन किवें करना है, क्यों अपनी मत नाल कीती हुई सेवा व्यर्थ हुंदी है। अपनी अकल नाल मैं कहां मैं सेवा बहुत करदा, दान बहुत कीता, मैं सिमरन करदा, वह व्यर्थ हो जाएगा। क्यों? अपनी मत नाल दिता हुआ दान, बंदा हंकारी हो जाता, मैं दान दिता है। आज जदों लिस्ट पढ़ी जाती ना नावों की, सत्संग कथा कीर्तन वल ध्यान होवे ना होवे, साढ़े पिंडां दा माहौल है, जदों सैकटरी साहब उठ के माया बोलते ना, फलाने बंदे बोलो इन्नी, फलाने बोलो इन्नी, उदों सारे बंदे ध्यान नाल सुनते, मेरा 500 बोले, साड़ी खंड की बोरी बोली है, मैं देसी घ्यो का टीम दिता है, वह बोले, जे वो नाम ना बोलिया जाए तो लोग इतों तक भी कहें खा गए हो, खा गए हो, चोर है, साडा नाम नहीं बोलिया। इतने अपना नाम सुन नहीं आए, क्योंकि जे दान करके हंकार पैदा हो गया, दान व्यर्थ हो जाएगा। 500 बंदे विच नाम तो बोल दिता जाएगा, पर साध संगत वो दान दिता व्यर्थ हो सकता है। श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज की बाणी का फरमान है, तुसी हुणे भोग विच श्लोकां सुनिया, धन गुरु तेग बहादुर महाराज ने कहा, जिमें हाथी नदी विच नहा के चिक्कड़ उपर पा ले, उहदा इशनान कीता व्यर्थ है। ऐदां दान करके कोई माण कर ले, उहदा दान दिता व्यर्थ है। दान करके कोई हंकार करे, उहदा दान दिता व्यर्थ है। श्री गुरु तेग बहादुर महाराज जीआं ने बचन कहे, पातशाह कहिंदे तीर्थ वरते अर दान कर, तीन चीज़ां करके, तीर्थां ते आए, दान दिता, कोई चंगा वर्त रखिया। वो वर्त का अर्थ है, अज बहुत बंदे तुहाडे च ऐसे होणगे जिहड़े शराब पीण वाले ने, पर तुसीं गुरद्वारे आए हो, अज वर्त रख के आए, अज खाणा पीणा नहीं भी कुछ, अज नहा के जाणा, अज गुरु दे घर चल, इन्ना कु वर्त रखिया पर व्यर्थ। जे मन च माण आ जाए, पढ़ो, सहिब कहिंदे तीर्थ वरते अर दान करै,

0: listening to KRPI 1550 Radio, Ferndale, Washington.
1: गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की पवित्र बाणी ए तुर की बाणी दुखां दा कलेशां दा नाश करन वाली बाणी एक ओंकार तो लैके 18, 10, 20 तक सारी बाणी सर्व कल्याण करन वाली कल्याण रूप बाणी है। महाराज बख्शिश करदे हन सर्व रोग का अवखद नाम। अज संसार वल जाती पाईए हर मनुख नू कोई ना कोई दुख लग्या होया। महाराज बाणी विच भी इस संसार दी हालत नू दसदे हन कि जिस मनुख पै करो बेनती सो अपने दुख भरिया। हर मनुख नू कोई ना कोई दुख लग्या होया। किसे दा कार विहार नहीं चलदा, किसे दे कार तों दुख नहीं निकलदा, किसे नू मुकदमा पै गया, किसे दे घर औलाद नहीं होई तां दुखी है। जे औलाद है तां हुकम विच नहीं है ओ तां दुखी है। अनेक तरह दे होर दुख हन। इना सारिया ही दुखा दा जो दवा है औषधि है महाराज बख्शिश करदे हन सर्व रोग का अवखद नाम। मेरा बैद गुरु गोविंदा हर हर नाम अवखद मुख देवै काटै जम की फंदा। मेरा सतगुरु ऐसा वैद है कि मेरे तन दे रोग भी मिटा देंदा है, मेरे मन दे रोग भी मिट जांदे हन। केड़ी दवाई देंदा है, आख्या हर हर नाम अवखद मुख देवै। जदों नाम दी सिमरन दी दवाई गुरु ने मैनू बख्शी ना तां मैनू इस संसार दे दुखां दी तत्ती वाह लगी, ना जमा दी तत्ती वाह लगी। एथे ओथे आप परमेश्वर रखवाला हुआ। तो उस पवित्र बाणी विचों कुछ शब्द रख्या दे आप दी भेटा कर रहा। ए सर्व रोग दा नाश करन वाली बाणी, पर एक शर्त है, श्रद्धा प्यार सिदक दे नाल अमृत वेले जाग के इशनान करके ए बाणी पढ़िए तां फिर दुख नेड़े नहीं आ सकदे। आओ सारे गुरु की बाणी दा ए अभ्यास करिए, क्योंकि गुरु की बाणी तां है ही ऐसी।

0: ਅਸ਼ਟਪਦੀ
1: ਟੂਟੀ ਗਾਂਢ ਨਹਾਰ ਗੋਪਾਲ
0: ਸਰਬ ਜੀਆਂ ਆਪੇ ਪਤਪਾਲ
1: ਸਗਲ ਕੀ ਚਿੰਤਾ ਜਿਸ ਮਨ ਮਾਹੀ
0: ਇਸਦੇ ਵਿਰਥਾ ਕੋਈ ਨਾਹੀ
1: ਰੇ ਮਨ ਮੇਰੇ ਸਦਾ ਹਰ ਜਾਪ
0: ਅਵਨਾਸੀ ਪ੍ਰਭ ਆਪੇ ਆਪ
1: ਆਪਨ ਕੀ ਕਛੂ ਨ ਹੋਏ
0: ਜਿਸੋ ਪ੍ਰਾਣੀ ਲੋਚੈ ਕੋਈ
1: ਜਿਸ ਬਿਨ ਨਾਹੀ ਤੇਰੇ ਕਿਸ ਕਾਮ
0: ਗਤ ਨਾਨਕ ਜਾਪੇ ਹਰ ਨਾਮ
1: ਰੂਪਵੰਤ ਹੋਏ ਨਾਹੀ ਮੋਹੈ
0: ਰੱਬ ਕੀ ਜੋਤ ਸਗਲ ਘਟ ਸੋ ਹੈ
1: ਧਨਵੰਤਾ ਹੋਏ ਕਿਆ ਕੋ ਗਰਬੈ
0: ਜਾਂ ਸਭ ਕੁਛ ਕਿਸਕਾ ਦੀਆ ਦਰਬੈ
1: ਹੱਥ ਸੂਰਾ ਜੇ ਕੋ ਕਹਾਵੈ
0: ਰੱਬ ਕੀ ਕਲਾ ਬਿਨਾ ਕਹਿਤਾਵੈ
1: ਜੇ ਕੋ ਹੋਏ ਬਹਿ ਦਾ ਸਾਰ
0: ਇਸ ਦੇਨ ਹਾਰ ਜਾਂ ਨੈਗਾ ਵਾਰ
1: ਜਿਸ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਟੂਟੈ ਹਉ ਰੋਗ
0: ਨਾਨਕ ਸੋਜਨ ਸਦਾਇਆ ਰੋਗ
1: ਜਿਉਂ ਮੰਦਰ ਕੋ ਥੰਮੈ ਥੰਮਨ
0: ਜਿਉਂ ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਮਨੈ ਅਸਥੰਬਨ
1: ਜਿਉਂ ਪਾਖਾਨ ਨਾਮ ਚੜ ਤਰੈ
0: ਪ੍ਰਾਣੀ ਗੁਰ ਚਰਨ ਰਖਤ ਨਿਸਤਰੈ
1: ਜਿਉਂ ਅੰਧਕਾਰ ਦੀਪਕ ਪ੍ਰਗਾਸ
0: ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖ ਮਨ ਹੋਏ ਵਿਗਾਸ
1: ਜਿਉਂ ਮਹਾ ਉਦਿਆਨ ਮਹਿ ਮਾਰਗ ਪਾਵੈ
0: ਜਿਉਂ ਸਾਧੂ ਸੰਗ ਮਿਲ ਜੋਤ ਪ੍ਰਗਟਾਵੈ
1: ਤਿਨ ਸੰਤਨ ਕੀ ਬਾਂਛੋ ਧੂਰ
0: ਨਾਨਕ ਕੀ ਹਰ ਲੋਚਾ ਪੂਰ
1: ਮਨ ਮੂਰਖ ਕਾਹੇ ਬਿਲ ਲਾਈਐ
0: ਗੁਰ ਬਿਲਖੇ ਕਾ ਲਿਖਿਆ ਪਾਈਐ
1: ਦੁਖ ਸੁਖ ਪ੍ਰਭ ਦੇਵ ਨਹਾਰ
0: ਅਵਰ ਤਿਆਗ ਤੂਤ ਸਹਿ ਚਤਾਰ
1: ਜੋ ਕਛ ਕਰੈ ਸੋਈ ਸੁਖ ਮਾਨ
0: ਲਾ ਕਾਹੇ ਫਿਰੇ ਅਜਾਨ
1: ਕੌਣ ਬਸਤੇ ਆਈ ਤੇਰੇ ਸੰਗ
0: ਡਾਕਟਰ ਰਹਿ ਹੋਰਸ ਲੋਭੀ ਪਤੰਗ
1: ਰਾਮ ਨਾਮ ਜਬ ਹਿਰਦੇ ਮਾਹੀ
0: ਨਾਨਕ ਪਤਸੇ ਤੀ ਕਰ ਜਾਹੇ
1: ਜਿਸ ਵਕਰ ਕੋ ਲੈਣ ਤੂੰ ਆਇਆ
0: ਰਾਮ ਨਾਮ ਸੰਤਨ ਕਰ ਪਾਇਆ
1: ਅਜਿ ਭਮਾਨ ਲਿਓ ਮਨ ਮੋਲ
0: ਰਾਮ ਨਾਮ ਹਿਰਦੇ ਮੈਂ ਤੋਲ
1: ਲਾਦ ਖੇਪ ਸੰਤਾਂ ਸੰਗ ਚਾਲ
0: ਅਵਰ ਤਿਆਗ ਬਖਿਆ ਜਨਜਾਲ
1: ਧਨ ਧਨ ਕਹਿ ਸਭ ਕੋਈ
0: ਮੁਖੋ ਜਲਹਰ ਦਰਗਹਿ ਸੋਏ
1: ਇਹੋ ਵਾਪਾਰ ਬਿਰਲਾ ਵਾਪਾਰ ਹੈ
0: ਨਾਨਕ ਤਾਕੈ ਸਤਿਗੁਰ ਹਾਰ ਹੈ
1: ਤੈਨੂੰ ਸਾਧ ਕੇ ਧੋਏ ਧੋਏ ਪੀਓ
0: ਅਰਪ ਸਾਧ ਕੋ ਆਪਣਾ ਜੀਓ
1: ਸਾਧ ਕੀ ਧੂਰ ਕਰੋ ਇਸ਼ਨਾਨ
0: ਸਾਧ ਉਪਰ ਜਾਈਐ ਕੁਰਬਾਨ
1: ਸਾਧ ਸੇਵਾ ਵਟਭਾਗੀ ਪਾਈਐ
0: ਸਾਧ ਸੰਗ ਹਰ ਕੀਰਤਨ ਗਾਈਐ
1: ਅਨਕ ਬਿਗਨ ਤੇ ਸਾਧੂ ਰੱਖੈ
0: ਅਰਗੁਣ ਗਾਇਆ ਮਰ ਤਰਸ ਚੱਖੈ
1: ਓਟ ਗਈ ਸੰਤ ਹੰਦਰ ਆਇਆ
0: ਸਰਬ ਸੁਖ ਨਾਨਕ ਤੇ ਪਾਇਆ
1: ਮ੍ਰਿਤਕ ਕੋ ਜੀ ਵੱਲ ਨਹਾਰ
0: ਭੁਖੇ ਕੋ ਦੇ ਬਤੇ ਆਧਾਰ
1: ਸਰਬ ਨਿਧਾਨ ਜਾਂ ਕੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਮਾਹੀ
0: ਗੁਰ ਬਿਲਖੇ ਕਾ ਲਹਿਣਾ ਪਾਏ
1: ਸਭ ਕਿਸ ਤਿਸ ਕਾ ਉਹ ਕਰਨਾ ਜੋਗ
0: ਤਿਸ ਬਿਨ ਦੂਸਰ ਹਵਾ ਨ ਹੋਗ
1: ਜਪ ਜਾਂ ਸਦਾ ਸਦਾ ਦਿਨ ਰਹਿਣੀ
0: ਸਭਤੀ ਉਜ ਨਿਰਮਲ ਇਹ ਕਰਨੀ
1: ਹਰ ਕਿਰਪਾ ਜਿਸ ਕੋ ਨਾਮ ਦੀਆ
0: ਨਾਨਕ ਸੋਜਨ ਨਿਰਮਲ ਥੀਆ
1: ਜਾਂ ਕਹਿ ਮਨ ਕੋ ਕੀ ਪ੍ਰਤੀਤ
0: ਜਿਸ ਦਿਨ ਆਵੇ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਚੀਤ
1: ਭਗਤ ਭਗਤ ਸੁਣੀਆਂ ਤਿਹ ਲੋਏ
0: ਜਾਂ ਕਹਿ ਹਿਰਦੈ ਇੱਕੋ ਹੋਏ
1: ਸੱਚ ਕਰਨੀ ਸਤਾਂ ਕੀ ਰਹਿਤ
0: ਸੱਚ ਹਿਰਦੈ ਸਤਮੁਖ ਕਹਿਤ
1: ਸਾਚੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਸਾਚਾ ਆਕਾਰ
0: ਸੱਚ ਵਰਤੈ ਸਾਚਾ ਪਾਸਾਰ
1: ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਦਿਨ ਸੱਚ ਕਰ ਜਾਤਾ
0: ਨਾਨਕ ਸੋਜਨ ਸੱਚ ਸਮਾਤਾ ਸਲੋਕ
1: ਰੂਪ ਨਰੇਖ ਨਰੰਗ ਕਿਛ ਤ੍ਰਿਹ ਗੁਣ ਤੇ ਪ੍ਰਭ ਭਿੰਨ
0: ਸਹਿ ਬੁਝਾਏ ਨਾਨਕਾ ਜਿਸ ਹੋਵੈ ਸੋ ਪ੍ਰਸੰਨ ਅਸ਼ਟਪਦੀ
1: ਅਵਨਾਸੀ ਪ੍ਰਭ ਮਨ ਮਹਿ ਰਾਖ
0: ਮਾਨੁ ਕੀ ਤੂੰ ਪ੍ਰੀਤ ਤਿਆਗ
1: ਇਸੇ ਪਰੈ ਨਾਹੀ ਕਿਛ ਹੋਏ
0: ਸਭ ਨਿਰੰਤਰ ਇੱਕੋ ਸੋਏ
1: ਆਪੇ ਬੀਨਾ ਆਪੇ ਦਾਨਾ
0: ਗੈਰ ਗੰਭੀਰ ਗਹੀਰ ਸੁਜਾਨਾ
1: ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਗੋਬਿੰਦ
0: ਕਿਰਪਾ ਨਿਧਾਨ ਦਿਆਲ ਬਖਸ਼ੰਦ
1: ਸਾਧ ਤੇਰੇ ਕੀ ਚਰਨੀ ਪਾਉ
0: ਨਾਨਕ ਕੈ ਮਨ ਇਹ ਨਰਾਉ
1: ਮਨਸਾ ਪੂਰ ਸਰਨਾ ਜੋਗ
0: ਕਰ ਪਾਇਆ ਸੋਈ ਹੋ
1: ਹਰਨ ਭਰਨ ਜਾਂ ਕਾ ਨੇਤਰ ਫੋਰ
0: ਇਸਕਾ ਮੰਤਰ ਨਾ ਜਾਣੈ ਹੋਰ
1: ਹੰਦ ਰੂਪ ਮੰਗਲ ਸਦ ਜਾਂ ਕੈ
0: ਸਰਵ ਥੋਕ ਸੁਣੀਐ ਕਰਤਾ ਕੈ
1: ਰਾਜ ਮਹਿਰਾਜ ਜੋਗ ਮਹਿ ਜੋਗੀ
0: ਤਪ ਮੈਂ ਤਪੀਸਰ ਕ੍ਰਿਸਤ ਮੈਂ ਭੋਗੀ
1: ਧਿਆਈ ਧਿਆਈ ਭਗਤਾਂ ਸੁਖ ਪਾਇਆ
0: ਨਾਨਕ ਦਸ ਪੁਰਖ ਕਾ ਕਿਨੇ ਅੰਤ ਨਾ ਪਾਇਆ
1: ਜਾਂ ਕੀ ਲੀਲਾ ਕੀਮਤ ਨਾਹੀ
0: ਸਗਲ ਦੇਵ ਹਾਰੇ ਅਵਗਾਹੇ
1: ਪਿਤਾ ਕਾ ਜਨਮ ਕੇ ਜਾਣੈ ਪੂਤ
0: ਸਗਲ ਪਰੋਹੀ ਆਪਣੇ ਸੂਤ
1: ਸੁਮਤ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਜਿਨ ਦੇ
0: ਜਨਦਾਸ ਨਾਮ ਤੇ ਆਵੈ ਸੇ
1: ਦੇਹ ਗੁਣ ਮੈਂ ਜਾਂ ਕੋ ਪਰਮਾਈ
0: ਜਨਮ ਰੈਫਰ ਆਵੈ ਜਾਏ
1: ਊਚ ਨੀਚ ਤਿਸ ਕੇ ਅਸਥਾਨ
0: ਜੈਸਾ ਜਨਾਵੈ ਤੈਸਾ ਨਾਨਕ ਜਾਨ
1: ਨਾਨਾ ਰੂਪ ਨਾਨਾ ਜਾਂ ਕੇ ਰੰਗ
0: ਨਾਨਾ ਪੇਖ ਕਰੇ ਇੱਕ ਰੰਗ
1: ਨਾਨਾ ਬਿਦ ਕਿਨੋ ਵਿਸਾਰ
0: ਬਾਬੇ ਬਨਾਸੀ ਇੱਕ ਅੰਕਾਰ
1: ਨਾਨਾ ਚਲਿਤ ਕਰੇ ਤਿਨ ਮਾਹੀ
0: ਪੂਰ ਰਹੇ ਪੂਰਨ ਸਭ ਠਾਏ
1: ਨਾਨਾ ਬਿਦ ਕਰਬੰਤ ਬਨਾਈ
0: ਆਪਣੀ ਕੀਮਤ ਆਪੇ ਪਾਈ
1: ਸਭ ਘਰ ਤਿਸਕੇ ਸਭ ਤਿਸਕੇ ਠਾਉ
0: ਜਬ ਜਬ ਜੀਵੈ ਨਾਨਕ ਹਰ ਨਾਮ
1: ਨਾਮ ਕੇ ਧਾਰੇ ਸਗਲੇ ਜੰਤ
0: ਨਾਮ ਕੇ ਧਾਰੇ ਖੰਡ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ
1: ਨਾਮ ਕੇ ਧਾਰੇ ਸਿਮਰਤ ਵੇਦ ਪੁਰਾਣ
0: ਨਾਮ ਕੇ ਧਾਰੇ ਸੁਣਨ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ
1: ਨਾਮ ਕੇ ਧਾਰੇ ਆਗਾਸ ਪਤਾਲ
0: ਨਾਮ ਕੇ ਧਾਰੇ ਸਗਲੇ ਆਕਾਰ
1: ਨਾਮ ਕੇ ਧਾਰੇ ਪੁਰੀਆਂ ਸਭ ਭਵਨ
0: ਨਾਮ ਕੇ ਸੰਗੁਦਰੇ ਸੁਣ ਸਰਵਣ
1: ਹਰ ਕਿਰਪਾ ਜਿਸ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਲਾਏ
0: ਨਾਨਕ ਚੌਥੇ ਪਦ ਮੈਂ ਸੋ ਜਨਗਤ ਪਾਏ
1: ਰੂਪ ਸਤ ਜਾਂ ਕਾ ਸਤ ਅਸਥਾਨ
0: ਸਤ ਕੇ ਵਰ ਪ੍ਰਧਾਨ
1: ਕਰਤੂਤ ਸਤ ਸਤ ਜਾਂ ਕੀ ਬਾਣੀ
0: ਸਤ ਪੁਰਖ ਸਭ ਮਹੇ ਸਮਾਣੀ
1: ਸਤ ਕਰਮ ਜਾਂ ਕੀ ਰਚਨਾ ਸਤ
0: ਮੂਲ ਸਤ ਸਤ ਉਤਪਤ
1: ਸਤ ਕਰਣੀ ਨਿਰਮਲ ਨਿਰਮਲੀ
0: ਜਿਸੇ ਬੁਝਾਏ ਤਿਸੈ ਸਭ ਭਲੀ
1: ਸਤ ਨਾਮ ਪ੍ਰਭ ਕਾ ਸੁਖਦਾਈ
0: ਵਿਸਵਾਸ ਸਤ ਨਾਮ ਗੁਰ ਤੇ ਪਾਈ
1: ਸਤ ਭਜਨ ਸਾਧੂ ਉਪਦੇਸ਼
0: ਸਤ ਤੇ ਜਨ ਜਾ ਕੇ ਹਿਰਦੈ ਪ੍ਰਵੇਸ਼
1: ਸਤ ਨਿਤ ਬੂਝੈ ਜੇ ਕੋਈ
0: ਨਾਮ ਜਬਰਤਾ ਕੀ ਗਤ ਹੋਏ
1: ਆਪ ਸਤ ਕੀ ਆ ਸਭ ਸਤ
0: ਆਪੇ ਜਾਣੇ ਆਪਣੇ ਮਿਤ ਗਤ
1: ਜਿਸ ਕੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸੋ ਕਰਣੈ ਹਾਰ
0: ਅਵਰ ਨ ਬੂਝ ਕਰਤ ਵਿਚਾਰ
1: ਕਰਤੇ ਕੀ ਮਿਤ ਨ ਜਾਣੈ ਕੀਆ
0: ਨਾਨਕ ਜੋਤ ਸੁਭਾਵੈ ਸੋ ਵਰਤੀਆ
1: ਬਿਸਮਨ ਬਿਸਮ ਭਏ ਬਿਸਮਾਦ
0: ਜਿਨ ਬੂਝਿਆ ਤਿਸ ਆਇਆ ਸਵਾਦ
1: ਰਬ ਕੈ ਰੰਗ ਰਾਜ ਜਨ ਰਹੇ
0: ਗੁਰ ਕੈ ਵਚਨ ਪਦਾਰਥ ਲਹੇ
1: ਹੋਏ ਦਾਤੇ ਦੁੱਖ ਕਾਟ ਨ ਹਾਰ
0: ਜਨ ਕੈ ਸੰਗ ਧਰੈ ਸੰਸਾਰ
1: ਜਨ ਕਾ ਸੇਵਕ ਸੋ ਵਡਭਾਗੀ
0: ਜਨ ਕੈ ਸੰਗ ਏਕ ਲਿਵ ਲਾਗੀ
1: ਗੁਰ ਗੋਬਿੰਦ ਕੀਰਤਨ ਜਨ ਗਾਵੈ
0: ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨਾਨਕ ਫਲ ਪਾਵੈ ਸਲੋਕ
1: ਆਦ ਸੱਚ ਜੁਗਾਦ ਸੱਚ
0: ਪੇ ਸੱਚ नानक हो सी पे सच अष्टपदी
1: चरण सत सत प्रसन हार
0: पूजा सत सत सेवदार
1: दर्शन सत सत पेकनहार
0: नाम सत सत त्यावनहार
1: आप सत सत सब धारी
0: आपे गुणकारी
1: शब्द सत सत प्रभक्ता
0: सुरत सत सत जस सुनता
1: भुजन हार को सत सब होए
0: नानक सत सत प्रभ सोए
1: सत स्वरूप हृदय जन मानिया
0: नानक रावण तिन मूल पछाने
1: जाके हृदय विश्वास प्रभाया
0: तत ज्ञान ते समान प्रगटाया
1: भय ते निरपो होए बसाना
0: जिसते उपजा ते समाहे समाना
1: बस माही ले बस कटाई
0: ताको पिंड न कहना जाई
1: बूझे बूझ नहार विवेक
0: नारायण मिले नानक एक
1: ठाकुर का सेवक आज्ञाकारी
0: ठाकुर का सेवक सदा पुजारी
1: ठाकुर के सेवक कै मन प्रतीत
0: ठाकुर के सेवक की निर्मल रीत
1: ठाकुर को सेवक जाने संग
0: का सेवक नाम कै रंग
1: सेवक को प्रभ पालन हारा
0: सेवक की रखे निरंकारा
1: सो सेवक जिस दया प्रभ धारै
0: नानक सो सेवक साथ साथ समारै
1: अपने जान का पर्दा ढकै
0: अपने सेवक की सर पर रखै
1: अपने दास को दे बढाई
0: अपने सेवक को नाम पाई
1: अपने सेवक की आप पत रख है
0: ताकि कदमित कोई न लख है
1: रब के सेवक को न पहुँचे
0: रब के सेवक ऊंचते ऊंचे
1: जो प्रभु अपनी सेवा लाया
0: नानक सो सेवक दह दस प्रगटाया
1: नीकी कीरी मह कर रख है
0: भस्म कर एलस कर कोट लाख
1: जिसका शासन काटते आप
0: ताको राखत दे कर हाथ
1: मांस जतन करत बहु भांत
0: जिसके कर्तव्य प्रथे जात
1: मारे न रख है अवर न कोई
0: सर्व जिया का रखा सोए
1: काहे सोच कर हेरे प्राणी
0: जप नानक प्रभु लख बडाणी
1: बारंबार बार प्रभु जपी है
0: मते मन तन तरपी है
1: नाम रत्नजन गुरमुख पाया
0: जिसके शेवर न ही दृष्टाया
1: नाम धन नामो रूप रंग
0: नामो सुखर नाम का संग
1: नाम रस जो जन तृप्ताने
0: मंतन नाम में नाम समाने
1: ऊर्त बैठ सोभत नाम
0: कहो नानक जन कै सद काम
1: बोलो जस जेवा दिन रात
0: रबे अपने जन की नींदात
1: करे भक्त आत्म कह चाय
0: रबे अपने से रहे समाई
1: जो हो वाह हो वत सो जाने
0: रबे अपने का हुक्म पछाने
1: इसकी महिमा कौन बखानो
0: इसका गुण कह एक न जानो
1: आठ पैर प्रभ से हजूरे
0: कहो नानक से जन पूरे
1: मन मेरे तिन की ओट ले
0: मंतन अपना तिन जन दे
1: जन जने अपना प्रभु पछाता
0: सो जन सर्व थोक का दाता
1: किसकी शरण सर्व सुख पाव है
0: इसके दर्श सब पाप मिटावे
1: अवर सियानक सगली छाट
0: इस जन की तू सेवा लाग
1: आप न जान न हो भी तेरा
0: नानक तिस जन के पूजो सद पैरा
1: श्लोक सत पुरख जिन जानिया सतगुर तिस का नाम
0: तिसके संग सिखी उदर है नानक हर गुण का अष्टपदी
1: सतगुर सेवकी करै प्रतपाल
0: सेवक औगुर सदा दयाल
1: सिख की गुर दुरमत मल हिरै
0: गुर बचनी हर नाम उचरै
1: सतगुर सिख के बंधन काटै
0: गुर का सिख वकार ते हटै
1: सतगुर सिख को नाम धन दे
0: गुर का सिख गुड भागी है
1: सतगुर सिख का हलत पलत सवारै
0: नानक सतगुर सिख को जी नाल समारै
1: गुर कै गृह सेवक जो रहै
0: गुर की आज्ञा मन में सहै
1: आप उसको कर कष न जनावै
0: हर हर नाम हृदय सद ध्यावै
1: मन बेचै सतगुर कै पास
0: सेवक के कार्य रास
1: सेवा करत होए निकामी
0: जिसको होत प्राप्त स्वामी
1: अपनी कृपा जिस आप करे
0: नानक सो सेवक गुर की मतले
1: इस विश्व गुर का मन मान है
0: सो सेवक परमेश्वर की गत जाने
1: सो सतगुरु जिस हृदय हरना हो
0: नानक बार गुर को बल जा
1: सर्व निधान जी का दाता
0: आज पहर पार ब्रह्म रंग राता
1: ब्रह्म में जन जन में पार ब्रह्म
0: एक आप नहीं कश भरम
1: सह सियान पलया न जाइए
0: नानक ऐसा गुरबट भागी पाई है
1: सफल दर्शन देखत पुनीत
0: अर्षत चरणगत निर्मल रीत
1: भेट संग राम गुण रवे
0: पार ब्रह्म की दरगह गवे
1: सुनकर वचन करन आगाने
0: मन संतोखा तंपतिया ने
1: पूरा गुर अखियो जा का मंत्र
0: अमृत दृष्टि पे कहे हुए संत
1: गुण बेअंत कीमत नहीं पाए
0: नानक जिस भावे तिस लए मिलाए
1: देवाए को सत अनेक
0: सतपुरख पूर्ण विवेक
1: काहू बोल न पहुंचत प्राणी
0: अगमा गोचर प्रभ निरबानी
1: निराहार निर्वैर सुखदाई
0: ताकि कीमत कने न पाई
1: मानक भक्त बंधन नित करहे
0: चरण कमल हृदय सिमरै
1: सत बलहारी सतपुर अपने
0: नानक जिस पर सादा सा प्रभ जपने
1: यो हर रस पावे जन कोए
0: अमृत पीवे अमर सो होए
1: उस पुरख का नाही कदे विनाश
0: जाकै मन पर टे गुणतास
1: आठ पैर हर का नाम ले
0: सच उपदेशे वको दे
1: वो माया कै संग न लेप
0: मन में रखे हर हर एक
1: अंधकार दीपक प्रगासे
0: नानक भरम बहु दुख तै ते नासे
1: सत माही ठांड वरताई
0: अनंत भया दुख नाठे भाई
1: जन्म मरण के मिटे अंदेसे
0: साधु के पूर्ण उपदेशे
1: हो चुका निरपो होए बसै
0: सगल व्याध मन देखै नसे
1: जिसका साधन कृपा धारी
0: साध संग जप नाम मुरारी
1: हित पाई चुके भ्रम गमन
0: सो नानक हर हर दा सरवण
1: निर्गुण आप सरगुण भी होही
0: कला धार जन सगली मोही
1: अपने चरित प्रभ आप बनाए
0: अपनी कीमत आपे पाए
1: हर बिन दूजा नाही कोई
0: सर्व निरंतर एको सोए
1: ओत पोत रव्या रूप रंग
0: भय प्रकाश साधक संग
1: रचना अपनी कल धारी
0: अनक बार नानक बलहारी
1: श्लोक साथ न चलै बिन भजन दिखिया सगली शार
0: हर हर नाम कमावना नानक हो तन सार अष्टपदी
1: संत जना में करो विचार,
0: एक सिमरन नाम आधार,
1: अब रूपाप समीत पसारो,
0: शरण कमल विद मैं उर तारो,
1: कर्म कान सो प्राप्त समर्थ,
0: निरकर गह नाम हर वत,
1: ये तन संचो हो भगवंत,
0: संत जना का निर्मल मंत,
1: एक आस रखो मन माही,
0: सर्व रोग नानक मिट जाहि,
1: जिस तन को चार पुंट उठता वही,
0: सो तन हर से बाते पावे,
1: जिस सुख को नित बांचे मीत,
0: सो सुख साधु संग प्रीत,
1: जिस सोभा को करहे भली करनी,
0: सा सोभा पर हर की सरनी,
1: अन को पावी रोग न जाए,
0: रोग मिटे हर अवखत लाए,
1: सर्व निदान मैं हर नाम निदान,
0: जप नानक दरगह प्रवान,
1: मन प्रबोधो हर कह नाई,
0: एत स्थाप ते आ बैठाए,
1: ताको बिघन न लागे कोई,
0: जाके हृदय बसे हर सोए,
1: कल ताती ठंडा हर नाओ,
0: सिमर सिमर सदा सुख पाओ,
1: ओ बिन सह पूर्ण होए आस,
0: भगत पाए आत्म प्रकाश,
1: हित कर जाए बसे अविनाशी,
0: तो नानक काटी जम फासी,
1: हत विचार कह जन साचा,
0: जन्म मरे सो काचो काचा,
1: आवागमन मिटे प्रभ सेव,
0: आप त्याग शरण गुरुदेव,
1: क्यों रत्न जन्म का होए उधार,
0: हर हर सिमर पुराने आधार,
1: अन को पाप न छूटन हारे,
0: सिमरत शास्त्र वेद विचारे,
1: हर की भगत करहु मन लाए,
0: मन वंचित नानक फल पाए,
1: संग न चार स्थे रह तना,
0: काल पटावे मूर्ख मना,
1: सोत मीत कुटुंब हर बनेता,
0: इनते कहो तुम कवन सनाथा,
1: राज रंग माया विस्तार,
0: इनते कहो कवन छुटकार,
1: आस हस्ती रथ सवारी,
0: झूठा डंप झूठ पसारी,
1: जिन दिए तिस बुझे न बगाना,
0: नाम पसार नानक पछताना,
1: गुर की मातु ले आने,
0: भक्त बिना भव डूबे सियाने,
1: मन की भगत करहु मन मीत,
0: निर्मल होए तमारो चीत,
1: चरण कमल राखो मन माही,
0: जन्म जन्म के किल विख जाहि,
1: आप जपो अवरा नाम जपाव हो,
0: संत कहत रहत गत पाव हो,
1: सार भूत सत हर को नाओ,
0: सहस भय नानक गुण गाओ,
1: गुण गाव तेरी उतर समैल,
0: मनस जाय हो मैं बिख फैल,
1: ओहे अचिंत बसे सुख नाल,
0: सास ग्रासर नाम समाल,
1: छाट सियान सगली मना,
0: सात संग पावे सच तना,
1: हर पूंजी संच करो व्यवहार,
0: हम सब दरगह जयकार,
1: सर्व निरंतर एको देख,
0: तो नानक जाके मस्तक लेख,
1: एको जाप एको सलाह,
0: एक समर एको मन आहे,
1: एक सके गुण गाओ अनंत,
0: मंतन जाप एक भगवंत,
1: एको एक एक हर आप,
0: पूर्ण पूरे उप्रभ व्याप,
1: अंत विस्तार एक ते भये,
0: एक अराध प्रास्त गए,
1: मंतन अंतर एक प्रभ राता,
0: गुर प्रसाद नानक एक जाता, श्लोक
1: फिरत फिरत प्रभ आया, करया तो शरनाई,
0: नानक की प्रभ बेनती, अपनी भक्ति लाए, अष्टपदी
1: जाचक जन जाचे प्रभ दान,
0: कृपा देव हर नाम,
1: साध जना की मांगो धूर,
0: पार ब्रह्म शब्दा पूर,
1: सदा सदा प्रभ की गुण गावो,
0: सास सास प्रभ तुम्हें ध्यावो,
1: चरण कमल से लागे प्रीत,
0: करो प्रभ की नित नीत,
1: एकोट एको आधार,
0: नानक मांगे नाम प्रभ सार,
1: प्रभ की दृष्ट महा सुख होए,
0: रस पावे बिरला कोए,
1: जिन चाख्या से जान तृप्ताने,
0: पूर्ण पुरख नहीं डोलाने,
1: सुपर परे प्रेम रस रंग,
0: उपजे चाहो साध का संग,
1: परे शरण आन सत्याग,
0: अंतर प्रकाश अंधन निवलाग,
1: बड़ भागी जप्या प्रभ सोए,
0: नानक नावर ते सोए,
1: सेवक की मनसा पूरी पई,
0: सतगुर दे निर्मल मत लई,
1: जान को प्रभ होए दयाल,
0: सेवक की नो सदा निहाल,
1: बंधन काट मुक्त जन भया,
0: जन्म मरण दुख प्रम गया,
1: जिच पुन्नी सरदा सा पूरी,
0: गावर है आसत संग हजूरी,
1: जिसका सा तिन लिया मिलाए,
0: नानक भक्ति नाम समाए,
1: सोक्यों बिसरे जे काल न पाने,
0: सोक्यों बिसरे जे किया जाने,
1: सोक्यों बिसरे जे सब कुछ दिया,
0: सोक्यों बिसरे जे जीवन जिया,
1: सोक्यों बिसरे जे अग्न मह रख है,
0: गुर प्रसाद को बिरला लख है,
1: सोक्यों बिसरे जे बिख ते काट है,
0: जन्म जन्म का टूटा गंड है,
1: गुर पूरा तत ए है बुझाया,
0: प्रभ अपना नानक जन त्याया,
1: साजन संत करो ए काम,
0: आन त्याग जपो हर नाम,
1: सिमर सिमर सिमर सुख पावो,
0: आप जपो अबरे नाम जपावो,
1: भगत भाई तरिया संसार,
0: भगती तन होशी सार,
1: सर्व कल्याण सूप निध नाम,
0: मूढ़त जात पाए विश्राम,
1: सकल दुख का होवत नास,
0: नानक नाम जपो गुण पास,
1: उपजी प्रीत प्रेम रस जाओ,
0: मंत्र अंतर ही स्वाव,
1: नेत्रों देख दर्श सुख होए,
0: मन बिक सह साध चरण धोए,
1: भक्त जना कै मन तन रंग,
0: अल्लाह को पावे संग,
1: एक बस दी जय करमया,
0: प्रसाद नाम जप लिया,
1: ताकि उपमा कही न जा।

एक मूर्त अनेक दर्शन की न रूप अनेक, खेल खेला खेल खेल नंद को फिर एक। देव भेव न जानहि जेह वेद अर्क तेब, रूप रंग न जात पात सो जानी केह जेब, तात मात न

हरे अपारे हरियं करियं नरनामे अकामे पुजंग प्रयात छंद चतर चक्र करता चतर चक्र हरता चतर चक्र दाने चतर चक्र जाने चतर चक्र वर्ती चतर चक्र परती चतर चक्र पाले चतर चक्र काले चतर चक्र पासे चतर चक्र वासे चतर चक्र माने चतर चक्र दाने चाचरी छंद न सत्र न मित्र न परम न पितर।

के धर्म ध्वजा के अशोक बरन के सर्व अपरन के जगतं कृति है के छत्रंग छत्री है के ब्रह्म स्वरूप के अनुप अनुप के आद आदेव है।

के सर्वतर पेश के सर्वतर राजा के सर्वतर साजा के सर्वतर दीन के सर्वतर लीन के सर्वतर जाहो के सर्वतर पाहो के सर्वतर देश के सर्वतर पेश के सर्वतर काल के सर्वतर पाल के सर्वतर हंता के सर्वतर गंता के सर्वतर पेखी के सर्वतर पेखी के सर्वतर काज के सर्वतर राजा के सर्वतर सोख के सर्वतर पोख के सर्वतर तराण के सर्वतर प्राण के सर्वतर देश के सर्वतर पेश के।

मुलख राजा निरुक्त स्वरूप है तिर मुक्त विभूत है भर भूत प्रभा है सुजुक्त सुदा है सदैव स्वरूप है भेदी अनूप है समस्तो पराज है सदा सर्वसाज है समस्तुल सलाम है सदैवल अकाम है निर्बाध स्वरूप है गाद है अनूप है उंगाद रूपे अनाद स्वरूप है अनंगी अनामे त्रिपंगी त्रिकामे त्रिवर्गंग त्रिबाधे अगंजे अगाधे सुभंग सर्वभाग्य सो सर्व अनुराग त्रिभूत स्वरूप है अछेज है अछूत है के नरकं प्रणास है पृथ्वी वल प्रवास है निरुक्त।

भूते परमात्म परमाथे सदा सर्वसाथे अगाध स्वरूपे निर्बाध विभूते अनंगी अनामे त्रिभंगी त्रिकामे निर्भंगी स्वरूपे सर्वंगी अनूपे

निवारे कोट तुरंग कुरंग से कूदत पौन के गौन को जात निवारे भारी पुजान के भूप भली बेदन आवत सीसना जात बेचारे एत भय तो कहा भय भूप तंत को नांगे ही पाए पधारे जीत भिरा सब देश दसान को बाजत ढोल मृदांग नगारे गुंजत गुड़ग जान के सुंदर हिंसत ही है राज हजारे भूत भेख भवान के भूपत कौन गन नहीं जात बेचारे श्रीपत श्री भगवान भजे बिन अंत को अंत के धाम सधारे तीर्थ नान दया दमदान सो संजम नेम अनेक बसेख्या वेद पुराण कतेब कुरान जमीन जमान सबान के पेख पौन आहार जति जत तहर सब सब चार हजार क देख श्री भगवान भजे बिन भूपत एक रति बिन एक न लेख सो दिसपह दुरंत दुबाह सो साज सुनाह दुर्जान दलेंगे भारी गुमान भरे मन मैं कर पर्वत पंख हले न हलेंगे तोर अरीन मरोर मवासन माते मतंगन मान मलेंगे श्रीपद श्री भगवान कृपा बिन त्याग जहान निदान चलेंगे बीरा पार बड़े बरे आर अवचार हिसार की तार पछैया तोरत देश मलेंद मवासन मातिक जान के मान मलैया गाड़े गड़ान के तोड़न हर सो बातन ही चक चार लवैया साहिब श्री सब को सिर नायक जाचक अनेक सो एक दवैया दान वदे फनिंद निसाचर भूत भवेख भवान जपेंगे जीव जिते जाल मैं थाल मैं पाल ही पाल मैं सब थाप थपेंगे पुन प्रतापन बाढ़ जात धुन पापन के बहुपुंज खपेंगे साध समूह पर सन फिर जग सत्र सब अब लोक चपेंगे मानव इंद्र गजेंद्र नरात अब जोन तरलोक राज करेंगे कोट स्नान गजात गदान अनेक स्वंबर साज बरेंगे ब्रह्म महेश्वर बिशन सची पात।

सकल प्रजा जन आप सवारी सिवकन को सब गुण सुख दिया सतरन को पाल मोह बद किया घड़ घड़ के अंतर की जानत भले बुरे की पीर पछानत चीटी ते कुंचर असतूला सापर कृपा दृढ़ कर फूला संतन दुख पाए ते दुखी सुख पाए साधन के सुखी एक एक की पीर पछान घड़ घड़ के पढ़ पढ़ की जान जब उद करख करा कर तारा प्रजा तरत तब देह अपारा जब करख करत हो कब हो तुम मैं मिलत देह तर सब हो जेते बदन सृष्ट सब तार।

सेख उबारा सेख संगरो दुष्ट जेते उठवा तो तपाता सकल मलेच करावरण कहता जे असत होय तब सर नहीं परे तिनके दुष्ट दुख तो है।

दर्शन कर दिया गुरु का, जन्म मरण दुख जाए होवे सिफत फसाम दी, नूर अरसों कुरसों चटिया तो

मां प्रभु जी हे मेरे खसम मालक सार न जाना तू वड़दाना मैं तेरे गुणा की कदर नहीं कीती तेरे गुणा की कदर नहीं जान सकी तू सब तो वड्डा सियाणा है तू ही सब नू सियाणप देण वाला है तू सब नू दातां देण वाला है सब नू दान देण वाला है कर मेरे अंबद साई हे परमात्मा काल पुरख वाहिगुरु मेरे मालक मेरे ते आप कृपा करो मर से पातशाह जी मेहर कर कृपा की जय सा मत दी जय आठ पहर तुर त्याए हे मेरे मालक हे परमात्मा काल पुरख वाहिगुरु मेरे ते कृपा कर ते मैनू आप दी कृपा करके ते श्रेष्ठ मत बख्शिश कर मैनू ओ श्रेष्ठ मत दे जिस करके मैं अठे पैर तेरा नाम जपदी रहां तेरा सिमन करदी रहां सदा तेरी याद विच ही स्वास स्वास नाम जपां

हे मेरी जिंदे तू हंकार ना कर ते सारे दी चरणा दी धूड़ बन के रहो निमाणी हो के रहो गर्भ ना की जाए रेण हो भी जाए सारे दे चरणा दी धूड़ बन जाए बन के रहे तां गत जीरे तेरी तां तेरी तेरा सोहना आत्म जीवन बन जाएगा जे तू निम्रता चाह के निर्माणता चाह के सारे दे चरणा दी धूड़ बनी रहेगी।

हे परमात्मा अकाल पुरख वाहिगुरु, आपने कृपा कीती है जो मेरे अंदर भरम दा पर्दा बनया होया सी, इस तरह हंकार दा दी कंध बनी हुई, झूठ दी कंध बनी हुई सी, तेरे तो पर्दा बनया होया ही परमात्मा, तू आप ही कृपा करके जिन परम पर्दा खुला राम, जिन्हां दा तू आप कृपा करके सच्चे पातशाह जी ये भरम दूर कर दिता, ये पर्दा दूर कर दिता, वो भटकणां तों बच गए हैं। ऐसे ही परमात्मा अकाल पुरख वाहिगुरु, तेरे तो सदा बलहार जाइए, सदा कुरबान जाइए। मिटे अंधारे तजे बिकारे, ठाकर स्यों मन माना। भाई जिन्ना जीव इस्त्रियां दा परमात्मा अकाल पुरख वाहिपति दे नाल मन गिज गया है, मन जिहड़ा भिज गया है, परमात्मा वाहिगुरु दे नाल मन मन गया है, ते भाई फिर उन्हें उहदे अंदर सारे जिन्ने वकार आ वह दूर हो जाते हैं। उहदे अंदर अज्ञानता दा माया दा मोह दा अनेरा जिहड़ा दूर हो जाते हैं। प्रभ जी पाणी पई निकाणी, सफल जन्म परवाना। वो जीव स्त्री जिहड़ी परमात्मा अकाल पुरख वाहिगुरू नूं पाणी चंगी लगती है, पा जाती है, वह बेमुहताजी हो जाती, फिर किसी की उन्हूं कांड रहिंदी नहीं है, किसी की मुहताजी नहीं रहिंदी, फिर वह सफल जन्म परवाना, फिर उहदा जिहड़ा मनुखा जीवन है वह सफल हो जाता, कामयाब हो जाती है, उहदा जिहड़ा मनुखा जीवन प्रवान हो जाता है। आया सफलताओं को गनिए, जास रसना हर हर पनिए। पई अमोली पारा तोली, मुगत जुगत दार खोला। जिहड़ी भाई जीव स्त्री गुरु दी परमात्मा वाहिगुरू चंगी लग जाती है, पा जाती है, असे परमात्मा अकाल पुरख वाहिगुरू नाल मिल जाती है, जिहड़ा जन्म परमात्मा वाहिगुरू दे घर च प्रवान हो जाता है, पई अमोली वह भाई भारी कीमत वाली बन जाती है, सब कीमत मिल कीमत पाई, इस तरह भारे तोल वाली जाती है, मुक्त जुगत दर खोला। इस करके वो दरवाजा खुल जाता वो देह ते, जिस दरवाजे अंदर जाया, जिस घर विच जाया, जिस वस्ता विच जाया, जेड़े वकार हन विषय हन इन्हां तो खलासी मिल जाती है। कहो नानक हो निरपो होई, सो प्रा मेरा ओला। इस तरह जिन्ना जीव स्त्रियों परमात्मा अकाल पुरख वाहिगुरु ने अपने चरण जोड़ लिया, सूझी दे दिती है। कहो नानक हो निरपो होई, सो प्रा मेरा ओला। जदों परमात्मा अकाल पुरख वाहिगुरु दा मैनू सहारा मिल गया, आसरा मिल गया, तो मैं हुण भय तो रहत हो गई हाँ, हुण किसे दा पौ रहा नहीं है। निरभौ जपै सगल पौ मिटै, निरभौ की प्राप्ति हुई है, तो सारे भय जड़े दूर हो गए हैं जदों परमात्मा वाहिगुरु का आसरा मिल गया है। सो सतगुरु कृपा ग्रंथ करन, जो सतगुरु ने पावन पवित्र उपदेश बख्श किया है, आप सतगुरु के चरणा चाण के बेनती करिए, हे सतगुरु जी कृपा ग्रंथ करो, तेरे दर दे कूकर हाँ, तेरे दर दे दास हाँ, कृपा करके रहमत करके सानू आप दे दासां दा दास बना छड़ो, साड़ी अपनी औकात नहीं है। सतगुरु कृपा करके जे आपां निर्माणता विच आवांगे, निबड़ता चाहवांगे, अपनी होमे नू हंकार नू दूर करांगे गुरु की कृपा दे नाल, अपने आप नहीं होनी है ये होमे ते जिहड़ा हंकार अपने आप दूर नहीं होना, गुरु की कृपा नाल होना है। जे गुरु अगे अरदास बेनती करते रहिए, सतगुरु कृपा करिओ सानू अपने दासां दे दास बना लवो, फिर सतगुरु कृपा करनगे रहमत करनगे, सो इन्नियां बेनतियां प्रवान करनियां, ओ बेअंत भुलां दी आपने खिमा बख्शिश करनी जी।

प्रचार दे तीन माध्यम मने गए ने, कीर्तन, कथा और ढाडी प्रसंग। कीर्तन बंदगी है, कथा गुरबाणी दी विचार है और ढाडी प्रसंग इतिहास की रूपरेखा दा चित्रण है। मेरा स्वभाव कुदरत ने और गुरु दी बख्शिश द्वारा गुरबाणी विचार दा बने है कि ए विचार समूह घरां विच और दूर दूर तक लोकां नूं सुनाई दें तां उन्हां दी प्रेरणा नाल मैं ए कैसेट टेप रिकॉर्ड कराए ने जो पंज हैं जिन्हां विच वक्ख वक्ख गुरबाणी दे मजमून ने अलग अलग विषय ने और इन्हां पंज कैसेट दे विच मैं गुरबाणी दी जेड़ियां जरूरियां विचारां सन गुरु दी बख्शिश द्वारा संगतां दे सामने पेश कीतियां ने। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत आजूनी सैभं गुरुप्रसाद सर्वशीलं ममं शीलं सर्वपावने मम पावनं।

0: फैमिली केयर फार्मेसी
1: पूरे बीसी विच होम्योपैथिक दवाइयां च नंबर वन।
0: इना कोलो तुसी हर तरह दे विटामिन सप्लीमेंट्स हर्बल्स अते होम्योपैथिक प्रोडक्ट्स ले सकदे हो।
1: हर तरह दे नेचुरल हेल्थ प्रोडक्ट्स कंप्रेशन स्टॉकिंग्स ऑर्थोपी प्रोडक्ट्स भी ले सकदे हो।
0: हुन मोबिलिटी एड रेंट जा बाय भी कर सकदे हो।
1: फ्री प्लेस्टर पैकिंग ते डिलीवरी दे नाल नाल हर तरह दे गवर्नमेंट ते प्राइवेट क्लेम्स भी लैंदे हन।
2: 3 लोकेशंस टू सर्व यू सरी डेल्टा एंड वाइट रॉक।
0: जा कॉल किरण @604581190।

परम सन्मान योग हजूर दे अमृत बचना दा आनंद मान रहे गुरु सवारे सत संगी जनों आप जी ने पट कीरत साहब जी की रचना तो उच्चारण किया होया गुरु रामदास कृपालू जी की सिफत विच जो सवैया है इस दा पाठ सरवण किया है। अज दे इस सवैये दा संखेप भाव इस प्रकार है कि आदि गुरु धन गुरु नानक साहब जी ने उस निरंजन परमात्मा वाहगुरु जी दे नाम नू जानिया और उन्होंने लिब ला के अपने अंदर दी बिरती पूर्ण तौर ते टिका उस परमात्मा दी प्रेमा भगती कीती। गुरु नानक साहब जी दी कीती हुई प्रेमा भगती दा सदका हजूर दे अंग संग रहन वाले धन गुरु अंगद साहब जी एक समुंदर वत विशाल हो गए ते गुरु अंगद साहब जी ने आए हुए जग्यासुआ उते शब्द सुरत दे अभ्यास दी बरखा कर दिते। गुरु अमरदास उन्हां बारे भट्ट जी कह रहे ने उन्हां दी कथा ही अकत है। साडी एक जबान साडी एक रचना गुरु अमरदास जी दी कथा नूं पूर्ण तौर ते बयान नहीं कर सकदी। कहिंदे ने इन्हां तिन पातशाहियां दी कृपा दा सदका हुण धन गुरु रामदास पातशाह सोढ़ी सुल्तान गुरु नानक साहब जी दे भगती दे खजाने दे मालक बने ते इस जगत जलंदे नूं परमात्मा दे नाम दियां दातां मंडण वास्ते गुरु रामदास हुण कृपा पै कर दे। आओ इस अमृत बचन दी विचार धन गुरु रामदास जी दे चरणा विच अरदास करिए कि आप कृपा करके विच वर्तन प्रेम भावना श्रद्धा और अकीदत दी दात बख्श के इस मलीन ते खिंडे हुए मन नूं पूर्ण तौर ते टिका बख्श आप ही विचार करा लैन साध संगत बख्शो आशीष और उच्चारण करो जी सतनाम श्री वाहे गुरु जी करो कृपालता फिर उच्च

पत कीर्त साहिब जी ने अज दे इस अमृत बचन विच सब तो पहला आदि गुरु धन गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह जी दी एक मन खो के उस परमात्मा दी प्रेमा भगती दा जिक्र कीता है। पहला बचन पट साहब ने कहा, नानक नाम निरंजन जानियो, धन गुरु नानक साहब कृपालू जी ने उस परमात्मा दे नाम नू जान लिया, किन्नी भगत प्रेम लिवलाई, उस परमात्मा दी वाहगुरु जी दी भगती प्रेमा भगती धन गुरु नानक साहब जी ने एक मन खो के लिब ला के अपने अंदर दे पूर्ण टिका दे विच उस परिपूर्ण परमेश्वर वाहगुरु जी दी भगती कीती। आरंभता है प्रेमा भगती तो। धन गुरु नानक साहब जी ने हठ दी गल नहीं कीती। गुरु नानक साहब ने बद्दा चट्टी कोई काम कर ली सानू नहीं प्रेरिया। हजूर ने बेरसे कर्म कांडा विच सानू प्रवृत्त नहीं होन दिता। तन गुरु नानक साहब जी ने ता परमात्मा नू प्रेम करके उस दी प्रेमा भगती ली सानू प्रेरिया है। जिमें असी बाणी विचों तन गुरु नानक साहब जी दे अमृत बचन भी पढ़ने हां, हजूर ने एक बहुत रहमत भरिया कृपा भरिया बचन किया। गुरु नानक साहब जी दी जोत ने जे बाबा फरीद साहब ने ए बचन कहे कि तन तपै तनूर ज्यों बालन खड बलन पैरी थकां सिर जुलां जे मुंह पिरी मिलन, के अपने तन नू तंदूर दी तरह तपा दिया। हुण एक हथ है किन्ने जेड़ियां खड़ियां ने इनू इस तरह बाला के जिमें तंदूर दे विच लकड़ां बल दियां ने। तन तपै तनूर ज्यों बालन खड बलन पैरी थकां जे पैरां नाल चलदियां होया थक जावां, सिर जुलां मैं पैरां दी थां ते सिर परने खो के चल पवां, जे मुंह पिरी मिलन जे मैनू मेरा प्यारा मिल जाए। अगे सतगुरु ने प्रेमा भगती कर ली, बाहर दी पटकना तो बचा, सानू अंदर जुड़ के लिव ला के भगती करन दी गल सिखाई। हजूर ने नाल ही बचन कर दिता के तन ना तपाए तनूर ज्यों बालन खड ना बाल, अपने तन नू तंदूर दी तरह तपा ना, इन्हां खड्डियां नू बालन बना के तंदूर विच

फूक ना तन ना तपाए तनूर ज्यों बालन खाड ना बाल सिर पैरी क्या फेड़िया अंदर पिरी निखार। देख तू इना सिर ने इना पैरा ने तन दे अंगा ने की विगाड़िया तू अपने अंतर आत्मे उस प्यारे वह गुरु जी दी प्रेमा भगती करके ओनु तक ले। हुण इत्थे एक शब्द मैं अर्ज करनी चाहना कि इस शब्द आया प्रेमा भगती जां इउं कह लो किन्नी भगत प्रेम लिव लाई कि प्रेम ना लिव ला के रब दी भगती कीती। प्रेम एक परमात्मा दी ओ बख्शी हुई शक्ति है जेड़ी हर एक जीव अंदर परमात्मा ने टिकाई है। प्रेम है की असि आम तौर ते शब्द भी वरतने कि प्यार ही परमात्मा है। गुरु कलगीधर जी दे बचन पढ़ने साच कहो सुन लेखो सब है जिन प्रेम कियो तिन ही प्रपायो। प्रेम दरअसल की है? कोई मनुख ऐसा नहीं जिदे अंदर परमात्मा ने ए शक्ति प्रेम वाली एनर्जी प्रेम वाली ऊर्जा प्रेम वाली ताकत नहीं टिकाई। केवल मनुख नहीं हर जीव दे अंदर परमात्मा ने ए शक्ति ए अंश ए ऊर्जा टिका दिती है। केवल जीव ही नहीं इत्थों तक कि जमीन दे विच पैदा होई फसल जमीन दे विच पैदा होए पौधे जमीन दे उत्ते पैदा होए रुख परमात्मा ने उन्हां दे अंदर भी इस शक्ति नूं टिका दिता है। प्रेम एक अंदर दी खिच है। प्रेम एक परमात्मा दी दित्ती हुई ओ दात है जिहड़ी वख वख जीवां विच परमात्मा ने वख वख तरीकियां नाल टिका दित्ती है। जिवें उदाहरण कई वारी अर्ज करना हुंना हजूर ने बाणी विच भी बचन कीता है कहन लगे सरवर कमल किरण आगासी बिगसै सहज सुभाई। हुण कमल दा फुल जिहड़ा ओ सरोवर विच है ते किरण सूरज जिहड़ा ओ आसमान विच है दोनां दा करोड़ा माइल्स दा करोड़ा को दा इन्हां दा फासला है। इन्हां करोड़ा मीलां दी दूरी होण दे बावजूद कमल विच परमात्मा ने एक इहो जी शक्ति टिका दित्ती ऊर्जा टिका दित्ती जिहड़ा सूरज नूं अपने तो करोड़ा को दी दूरी होण दे बावजूद भी ओहदियां किरणां नूं देख के पूर्ण तौर ते खिड़ा विच आ जांदा है। ओह किहड़ी ताकत है ओह किहड़ी मिकनाती शक्ति है कि जिहड़ी इस कमल दे फुल नूं चिक्कड़ विच खिड़े होए नूं पूर्ण तौर ते खिड़ा देंदी है। सिर्फ अर्ज कर रहे हां कि प्रेम भाई साहब भाई गुरदास जी ने अपनी रचना विच बहुत सोहणियां उदाहरणां कुछ दित्तियां गुरु परमेश्वर दी प्रेमा भगती दे मुतलक के गुरु दी भगती परमात्मा दी प्रेमा भगती कैसी है। हर एक अंदर परमात्मा ने ए ताकत ए शक्ति ए ऊर्जा टिका दिती है। देखो हजूर ने बाणी विच बचन कहे ने चंद्रमा ते चकोर दा आपस विच कितना फासला है दोनां दी दूरी है। ना ता चकोर नू किसे ने स्कूल विच किसे ने किसे कॉलेज विच जा किसे ने अपने घर विच पिंजरे विच बंद करके ओनू सिखाया कि आओ देख रात नू चंद्रमा निकलना है ते तू सारी रात चकोर चंद्रमा नू एक टिक देखना है। सिर्फ अर्ज कर रहे हैं प्रेमा भगती प्रेम दी दात हर एक अंदर परमात्मा ने टिकाई। चकोर नू किसे ने तालीम नहीं दिती चकोर नू किसे ने ए पाठ नहीं पढ़ाया कि आसमान दे विच पैदा हुए चंद्रमा नू देख के तू सारी रात एक टिक एक नजर नाल तकी जाना है। हालांकि इथों तक कि चकोर दे मौत दा कारण भी कई बार चंद्रमा नू देखना हो जाता है क्योंकि चकोर सारी रात जदों चंद्रमा आउंदा आसमान ते एक टिक ओनू नजर टिका के देख दिए चंद्रमा जदों ए अपनी थां सारी रात बदलता है अपनी गतिशील चंद्रमा गति नाल जदों रुख चेंज करदा है पर चकोर जे चढ़ते वाले पासे चंद्रमा आया पूर्णमाशी दा ते उहने ए नहीं कि चंद्रमा दे नाल नाल अपने लत्तां नूं अपने जिस्म नूं कमाना है उहदा सुभाग है। चंद्रमा जे इस पास्यों चढ़िया चढ़ते वाले पास्यों शाम नूं उहने सवेर तक लहिंदे वाले पासे आउणा है
चकोर अपने पैरां नूं सारी रात एक थां ते थिर रखेगी, सिर्फ अपनी गर्दन नूं ही चंद्रमा दे नाल मोड़ी जाए। गर्दन मोड़दी है, कदी अपने पैर नहीं। इन्नी को दी सुरत इन्ना टिका कि उन्हूं अपने जिस्म दा भी कोई पता नहीं, केवल ता केवल अपनी गर्दन नूं झुका के अपनी पिट ते ला लैंदी है, ते कई वारी ओदी गर्दन झुकना भी ओदी मौत दा कारण बन जांदा है। पर वो केड़ी खिच है, चकोर नूं किसे ने तालीम नहीं दिती, चकोर नूं किसे ने पढ़ाया नहीं, चकोर ले कोई विद्या दा साधन नहीं, पर परमात्मा ने चकोर दे अंदर चंद्रमा दे प्रति एक खिच पैदा कीती, जिस खिच नूं जे किते मनुख समझे उसे खिच नूं ही प्रेम किया गया है। हुण वो दिस नहीं रही, पर उदा चंद्रमा नल नेक है। भाई गुरदास जी दी रचना विचो अर्ज कर रहे, भाई साहब ने पहला बचन किया, चंद चकोर प्रीत है, चकोर दी चंद्रमा नाल प्रीत है, प्रेम है, ते ओ एक टिक चंद्रमा नु देख रही है। चंद चकोर प्रीत है, लाए तार निखाले, तार दा अखरी अर्थ हुंदा लिव लानी, एक टिक देखी जाना। भाई साहब कहिंदे ने देखो, परमात्मा ने प्रेम एक जानवर विच, एक जीव विच, एक पंछी विच भी पैदा कर दिता। एक टेक हो के चंद्रमा नु देख रही है, चंद चकोर प्रीत है, लाए तार निखाले, चकवी सूरज खेत है, मिल खून सुखाले। हुण इत्थे पावे शब्द उन्होंने सूरज खेत क्या है कि चकवी दा सूरज नाल नेक है, दरअसल ओदा सूरज नाल ने नहीं, चकवी दा ने तां अपने चकवे दे नाल है, क्योंकि सूरज चढ़ नाल चानन विच उन्हां दा मिलाप है, ते अंधकार विच रात दे खनेरे विच उन्हां दा विछोड़ा पै जांदा है। हुण एक रात दा विछोड़ा है, सारी रात चकवी ते चकवा एक दूजे नूं पुकारी जा रहे ने। हजूर दे प्यारे सिख भाई गुरदास कहिंदे ने, उस चकवी ते चकवे नूं मनुख वर्गा ओदा शरीर नहीं, मनुख वर्गी ओदी बुद्धि नहीं, मनुख वर्गी ओदी सोचन दी शक्ति नहीं, मनुख जितना ओ कोई कार विखार भी नहीं कर सकदा, पर देख उस चकवी ते चकवे अंदर भी परमात्मा ने खिच रख दिती। एक रात दा विछोड़ा पिया ते सारी रात एक दूजे नूं पुकार दे रहे, उन्नी देर तक चैन नहीं, सकून नहीं, जिन्नी देर तक चकवी ते चकवा दोनों आपस विच मिल नहीं जाते। हुण ओ केड़ी खिच है जिहड़ी सारी रात कुरलांदे रहे, पुकारदे रहे। सिर मैं अर्ज करनी चाहना कि गुरु नानक साहब ने प्रेमा भगती कीती, एक टिक हो के ते अर्ज कर रहे हां कि प्रेम दी दात परमात्मा ने एक खिच हर एक दे विच पैदा कीती है। कमल विच खिच है सूरज नूं देख के, चकवी ते चकवे अंदर खिच है, चंद्रमा ते चकोर दी खिच है। भाई साहब ने दूसरा बचन कहा, पहला सी चंद चकोर प्रीत है, लाए त्यार तार निखाले, चकवी सूरज खेत है, मिल होन सुखाले, नेहो कवल जल जानिए खिड़ मूह बखाले। हुण पानी ते कमल दा फुल आपसी कैसा प्यार पै कर दे, कि सुकी मिट्टी दे उते कमल दे फुल कदी प्रफुल्लत हुंदे देखे ने। जमीन तां ओही है, छप्पड़ टोबा तां ओही है, पर कमल दे फुल ना सुके कदी टोबे विच, ना सुकी जमीन ते प्रफुल्लत होणगे। पानी रुकण दी देर है ते सौण दे महीने विच कमल दे फुल अपने आप नूं प्रफुल्लत करदे ने, ते पानी दे विच ओह पूर्ण तौर ते खिड़ जांदे। अगे मैं अर्ज करनी है, कमल दे फुल दी खिच सूरज नाल भी है, कमल दे फुल नूं जिंदगी पानी भी दे रहा है, पर जिहड़ी दिसदी नहीं ओह खिच पानी विच उहनूं मिल रही है। भाई साहब ने चौथा बचन किया, कहन लगे, मोर बबीए बोल दे वेख बदल काले। हुण काला बदल असमान ते चढ़ के आउंदा है, जितना मोर उहनूं देख के खुश हुंदा है, हुण बदल दा ते मोर दा आपसी की रिश्ता है। ओह असमान दे उत्ते, ओह धरती दे उत्ते जदों काली घटा चढ़ी ते मोर इको दम पैलां पाण लग पिया, ते अपने पंख उहने पूर्ण तौर ते खिलार लै बखेर लै। उस बदल नूं देख के मोर दे अंदर भी परमात्मा ने एक खिच पैदा कर दिती, जिहड़ी बदल नूं देख के खिड़ाओ विच आया ते नचण लग पिया,
पपीए वल झाती मारीए

0: परिपूर्ण परमात्मा ने अपनी प्रकृति दे जीवन विच एक अटल नियम रखे है। हर जीवन नो तीन पड़ावां दे चों लंघना पैंदा है। चाहे वो पत्थरां दा जीवन है, चाहे बनस्पति, चाहे वो पशुआं दा जीवन है, चाहे पंछियां दा, चाहे वो मनुखां दा जीवन है। क्योंकि इस प्राकृतिक मंडल विच मनुख जीवन दी शिखर है, जिंदगी दी बुलंदी है। इसनों धरती दा सरदार आखे है गुरु नानक देव जी महाराज ने, अवर जोन तेरी पनहारी, इस धरती में तेरी सिकदारी। इसनु अशरफुल मखलूकात आखे है। अगर जीवन नु नापांगे तो फिर इस प्राकृतिक मंडल विच मनुख तो सब कुछ थल्ले ही है, पिछे ही है। पिछे लई शब्द है संस्कृत देच पाश, जो पिछे रह गए, पाश देच रह गए पशु। कौन पशु? जो पाश देच रह गए, पिछे रह गए। तो मनुख तो पिछे है सारा पशु जगत, और इस पाश जगत देच, इस पशु जगत देच चौपाए जानवर आ जाते ने, पंछी आ जाते ने, वनस्पति आ जाती है, हथा की कुछ जड़ जीवन पत्थर भी आ जाते ने। क्योंकि गुरबाणी ने इन्हों भी यौन मने है। कई जन्म सैल गिर करया, कई जन्म गर्भ में खिरया। अनंत जन्मा तक, अनंत काल तक ऐ मनुख तू पत्थर भी रहे है, तो पत्थर दी जिंदगी भी पौगी है। अचेत सुन, तो जितना इस पृथ्वी दे जीवन है मनुख तो पिछांदा या मनुख, ये तीन तरह दे पड़ाव तो लंघदा है। और इन्हां तीन पड़ावां नू नाम दिता गया है बाल अवस्था, फिर जवान अवस्था, फिर वृद्ध अवस्था। चाहे वनस्पति है, चाहे पशु ने, चाहे पक्षी ने, चाहे मनुख ने, इन्हां ते झात मारांगे दिस पैणगे कुछ ऐसे जो बिरध ने, तर्जे जिंदगी दसेगी बिरध ने, तर्जे जिंदगी दस देगी युवक ने, जवान ने, आकार विचार ही दस देंगे बच्चा है, बालक है। ये बचपना जवानी बुढ़ेपा सिर्फ मनुखी तलते ही नहीं, पंछियां दे छवी ने, पशुआं दे छवी ने, पक्षियां दे छवी ने, और पत्थरां दे छवी ने। ऐसे पहाड़ ने बुढ़े हो गए, जैसे सतपुड़े नु कहंदे ने बिरध हो गया, ऐसे भी पहाड़ ने जो जवान ने, जैसे कि हिमालिया। पर ऐसे भी टीले अजे खड़े ने, उसर रहे ने, उच्चे हो रहे, जिन्हां नू कह के देख के ये आखना पैंदा है इते बच्चे ने। कुछ अजे प्रकृति दे गर्भ दे भी ने उभरणगे, समा लगेगा। लेकिन गल ते अशरफुल मखलूकात मनुख दी है, जो धरती दा सरदार है, गल ते इस दी करनी है। यही एक जीव है जो एक तरह की जिंदगी नहीं जीवंदा, कई तरह का जीवन जीवंदा है। इसका सामाजिक जीवन है, इसका कुछ राजनैतिक जीवन है, इसका कुछ अध्यात्मिक जीवन है। पूर्ण पुरुख उसनों कहंदे ने जो सामाजिक तल ते पूरा है, राजनैतिक तल ते पूरा है, धार्मिक तल ते पूरा है। बड़ा सोहना शब्द है गुरबाणी का, पूर्ण पुरुख, मुकम्मल इंसान, पूर्ण पुरुष वो पूरा है जिसका सामाजिक जीवन पूरा है, वो पूरा है जिसकी राजनीतिक सोचनी पूरी है, वो पूरन है जो धार्मिक तल से पूरा है। ये असी किस तरह नापांगे कि इना जिंदगी देच भी, इस तरह की जिंदगी देच भी समाज राजनीति ते धर्म देच भी बचपना है, जवानी है, वृद्धावस्था है, बुजुर्गी है, शरीरक बचपना अखा नाल देखा जाता है, समाजिक बचपना देखना है तो दिमाग नाल देखना पड़ेगा, अंदर दी अख नाल देखना पड़ेगा। शरीरक जवानी देखनी है अखा नाल दिखाई दे जाती है, जवान है, पर किसी का राजनीतिक तल ते बालग होना देखना है तो फिर अंदर दी अख चाहिए है, अंदर दी सोच चाहिए है। कोई धार्मिक तल ते पूरा है इते वेखण वास्ते पूरी अख चाहिए है अंदर दी, पर कोई शरीरक तल ते बुजुर्ग है, पूरा है, बुढ़ा हो गया है, इते अखां दा विषय है, अखां ही दस देंदियां ने ये बुढ़ा है, लेकिन अख ए नहीं दस सकती कि धार्मिक तल ते किथे खड़ा है, अख ए भी नहीं दस सकती कि समाजिक तल ते किथे खड़ा है, अखां ए भी दसन विच असमर्थ ने कि ए राजनीतिक तल ते किथे खड़ा है, इत्थे अंदर दी अग खोलनी पेगी। पर अक्सर एक बदकिस्मती रहिंदी है, अंदर दी अग अक्सर मनुखां दी बंदी रहिंदी है, बाहर दी अखां ए दो ने, अंदर दी अख वो एक है, और वो मनुख दे अंतिशकरण नूं वेख सकदी है, वो प्रकृति दे अंदर झाती मार सकदी है, वो अख बहुत गहरा वेख सकदी है, ये अखां इतनियां गहराई तक नहीं जा सकदियां। पर देखण दे चाहुंदा है एक दिन ये दो अखां भी हमेशा लई बंद हो गईयां, वो अख खुली ना, दोहे दिवरी मलक बहठा आए, गढ़ लीता गट लुटेया, दीवड़े गया बुझाए। बाबा फरीद कहंदे ने आया एक दिन मौत दा मलक, अपने नाल ऐसा तूफान ले आया, दो अखियां दे दीवे बुझा गया। मैं है ते कोशिश करदा रहा अंदर दे दीवे च तेल पाण दी, वट लबण दी, जलाण दी कोशिश करदा रहा, ओ ते जल ना सकया, ए दो बुझ गए। जीवन अंधकार में ही हो गया, जीवन मस्या दी रात बन के रह गया, जबकि जिंदगी मिली सी नूर होण लई, प्रकाश होण लई, चानण होण लई, इते अंधकार बन के रह गए। ओ जद तीसरी अख खुल जाए तो ऐसे पुरुष नु कह दिता जांदा है त्रैनयनं, तीन नेत्रा वाला, त्रिलोचन, लोचन अखां नु कहिंदे ने, त्रिलोचन इहदे कोल तीन नेत्र ने, इहदे कोल तीन अखां ने। अक्सर हर मनुख नु असीं कह सकदे हां दोयलोचन, दोयलोचन, त्रिलोचन जो हो गया उते संत है, उते भगत है, उते धार्मिक तल ते बुजुर्ग है, त्रिलोचन। धन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज 24 अवतारा दी कथा दे शिव जी नो कहिंदे त्रैनयनं, बरी पुत्र का ताहे को प्यो त्रैनयनं, ये तीन नेत्रा वाला कहिंदे ने ए दो अखां खुलियां संसार दा असली रूप दिखाई देंदा है, किसे किसे नूं दिखाई देंदा है, अजे बच्चे नूं नहीं दिखाई देंदा, नवे बच्चे जन्मे नूं ते मां भी नहीं दिखाई देंदी, उन्हूं कोई पता नहीं मां है, सामने प्यो खड़ा है ਉਸਨੂੰ ਕੋਈ ਬੋਧ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੇਰਾ ਪਿਤਾ ਹੈ। ਸਾਹਮਣੇ ਬਹਿਣ ਖੜੀ ਹੈ ਇਸਨੂੰ ਕੋਈ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਹੈ ਇਹ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਹੈ। ਅਜੇ ਅੱਖਾਂ ਇਸ ਦੀਆਂ ਦੋ ਖੁੱਲਣਗੀਆਂ ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ ਖੁੱਲਣਗੀਆਂ ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਰ ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੀਸਰਾ ਨੇਤਰ ਖੁੱਲਦਾ ਹੈ ਸੰਸਾਰ ਭਸਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਿਰੰਕਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਮਿੱਥ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਜਦ ਆਪਣਾ ਤੀਸਰਾ ਨੇਤਰ ਖੋਲਦਾ ਸੀ ਜੋ ਕੁਛ ਸਾਹਮਣੇ ਸੀ ਭਸਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਵਾਕਈ ਭਸਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਸੰਸਾਰ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦਾ ਰੂਪ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਸੰਸਾਰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਨਿਰੰਕਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਤੀਸਰਾ ਨੇਤਰ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਭਸਮ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਖੁੱਲ ਜਾਏ ਤ੍ਰਿਲੋਚਨ ਤਿੰਨ ਨੇਤਰਾਂ ਵਾਲਾ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਤਿਸ਼ਕਰਨ ਦੇ ਪਿਆਸ ਤੇ ਹੈ ਇਹ ਅੱਖ ਮੇਰੀ ਖੁੱਲੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਤੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਵੀ ਇਹੀ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਨਾਂ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਤ੍ਰਿਲੋਚਨ। ਤਿੰਨ ਨੇਤਰਾਂ ਵਾਲਾ ਭਾਵੇਂ ਅਜੇ ਦੋ ਅੱਖਾਂ ਵੀ ਢੰਗਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਅਜੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖਣ ਵਿਚ ਇਹ ਅਸਮਰਥ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਤ੍ਰਿਲੋਚਨ ਤ੍ਰਿਲੋਚਨ ਧਰਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਇੱਕ ਸ਼ਿਖਰਮਈ ਅਵਸਥਾ ਹੈ। ਤੀਸਰਾ ਨੇਤਰ ਖੁੱਲ ਗਿਆ ਤੋ ਖੈਰ ਜੈਸੇ ਸਰੀਰਕ ਤਲ ਦਾ ਬਚਪਨਾ ਹੈ ਜਵਾਨੀ ਹੈ ਬਿਰਧਾ ਅਵਸਥਾ ਹੈ ਕੋਈ ਸਮਾਜਿਕ ਤਲ ਤੇ ਵੀ ਬੱਚਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਸਦੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਵਿਚ ਪੁਖਤਗੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧਾਂ ਵਿਚ ਪਕਿਆਈ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਬੱਚਾ ਖਿਡੌਣਿਆਂ ਨਾਲ ਖੇਡਦਾ ਹੈ ਤੋੜਦਾ ਹੈ ਸਮਾਜਿਕ ਤਲ ਤੇ ਜੋ ਅਜੇ ਬੱਚਾ ਹੈ ਸਵੇਰੇ ਸੰਬੰਧ ਜੋੜਦਾ ਹੈ ਸ਼ਾਮੀ ਤੋੜਦਾ ਹੈ ਸ਼ਾਮੀ ਜੋੜਦਾ ਹੈ ਸਵੇਰੇ ਤੋੜਦਾ ਹੈ ਰਿਸ਼ਤੇ ਬਣਦੇ ਨੇ ਟੁੱਟਦੇ ਨੇ ਬਣਦੇ ਨੇ ਟੁੱਟਦੇ ਨੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਘਰ ਬਣਾਉਣਾ ਫਿਰ ਮਿਟਾਉਣਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਬਣਾਉਣਾ ਮਿਟਾਉਣਾ ਖੇਡ ਸੰਬੰਧ ਜੋੜਨੇ ਨੇ ਤੋੜਨੇ ਨੇ ਇਹ ਸਮਾਜਿਕ ਤਲ ਦਾ ਬਚਪਨਾ ਹੈ। ਸਵੇਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਜੋੜੇ ਨੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਸਵੇਰੇ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੋ ਕਿਧਰੇ ਕਿਧਰੇ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਪੱਧਰ ਤੇ ਵੀ ਸਮਾਜਿਕ ਬਚਪਨਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿਧਰੇ ਕਿਧਰੇ ਰਾਜਨੈਤਿਕ ਬਚਪਨਾ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵੀ ਸਾਰੀ ਇਸੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਖੜੀ ਤੋੜ ਫੋੜ ਤੇ ਇਹ ਜੋੜਿਆ ਉਹ ਤੋੜਿਆ ਉਹ ਤੋੜਿਆ ਇਹ ਜੋੜਿਆ ਇਸ ਜੋੜ ਤੋੜ ਤੇ ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਖੜੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਰਾਜਨੈਤਿਕ ਬਚਪਨਾ ਹੈ ਧਾਰਮਿਕ ਬਚਪਨਾ ਜੋ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਹੀ ਧਰਮ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਗੁੱਡੀ ਗੁੱਡੇ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਬੱਚੇ ਵਿਅਰਥ ਇਹ ਵਿਆਹ ਖੇਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਅਜੇ ਧਾਰਮਿਕ ਤਲ ਤੇ ਬਚਪਨਾ ਬਚਪਨ ਦੇ ਦੌਰ ਚੋਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਕਰਮ ਖਿਡੌਣਿਆਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਔਰ ਖਿਡੌਣੇ ਵੀ ਗੁੱਡੇ ਤੇ ਗੁੱਡੇ ਦੇ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਾਥੇ ਤੇ ਲੱਖ ਹੱਥ ਮਾਲਾ ਬਾਨਾ ਲੋਗਨ ਰਾਮ ਖਿਲੌਣਾ ਜਾਣਾ ਅਗਰ ਰਾਮ ਖਿਲੌਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਖਿਲੌਣਿਆਂ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਖੇਡਦੇ ਨੇ। ਜੋ ਧਾਰਮਿਕ ਤਲ ਤੇ ਬੱਚਾ ਹੈ ਰਾਮ ਖਿਲੌਣਾ ਹੈ ਰਾਮ ਕੋਈ ਵਾਸਤਵਿਕਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਰਾਮ ਕੋਈ ਸੱਚਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਰਾਮ ਕੋਈ ਹਕੀਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਖਿਲੌਣਾ ਖੇਡਣਾ ਹੈ ਮਨ ਦਾ ਪਰਚਾਵਾ ਸਿਰਫ ਮਨ ਦਾ ਪਰਚਾਵਾ। ਜੈਸੇ ਬੱਚਾ ਖਿਡੌਣਿਆਂ ਨਾਲ ਖੇਡ ਰਿਹਾ ਹੈ ਮਨ ਦਾ ਪਰਚਾਵਾ ਇਹ ਜ਼ਰਾ ਸਰੀਰਕ ਤਲ ਤੇ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਇਸਦੇ ਪਰਚਾਵੇ ਜ਼ਰਾ ਵੱਡੇ ਨੇ ਇਹਦੀਆਂ ਖਾਹਿਸ਼ਾਂ ਜ਼ਰਾ ਵੱਡੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਖਿਡੌਣਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਔਰ ਮਾਮੂਲੀ ਖਿਡੌਣਾ ਨਹੀਂ ਰਾਮ ਦਾ ਖਿਡੌਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਈਸ਼ਵਰ ਖਿਡੌਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਖੇਡੇ ਕਿਉਂਕਿ ਖਾਹਿਸ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਕਾਮਨਾਵਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਵਾਸ਼ਨਾ ਬੜੀ ਅਪਾਰ ਤੋ ਖਿਡੌਣਾ ਵੀ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੋ ਰਾਮ ਖਿਡੌਣਾ ਖੇਡਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੜਾਅ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਬਚਪਨਾ ਜਵਾਨੀ ਵਿਰਧਾਵਸਥਾ ਸਮਾਜਿਕ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ, ਧਾਰਮਿਕ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਧਰਮ ਦੀ, ਤੇ ਧਰਮ ਹੀ ਇੱਕ ਐਸਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਸਮਝ ਲਈਏ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਸਮਝ ਲਿਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ, ਸੋਈ ਅਜਾਨ ਕਹੇ ਮੈਂ ਜਾਣਿਆ, ਜਾਣਨ ਹਾਰ ਨਾ ਛਾਣਾ ਰੇ। ਧਰਮ ਨੂੰ ਜਾਣਿਆ ਨਹੀਂ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਜਾਣਿਆ ਨਹੀਂ, ਜਾਣਕਾਰੀ ਬਹੁਤ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇਹ ਜਾਣਦਾ, ਮੈਂ ਇਹ ਜਾਣਦਾ, ਮੈਂ ਉਹ ਜਾਣਦਾ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਅਨਜਾਣ ਹੈ। ਕੀ ਹੋਇਆ ਤੂੰ ਬਨਸਪਤੀ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਬਣ ਗਿਆ? ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੇ ਤੂੰ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਬਣ ਗਿਆ? ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਸਰੀਰ ਦੀ ਕੋਈ ਸਮਝ ਪੈ ਗਈ ਹੈ, ਵੈਦ ਬਣ ਗਿਆ? ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਫਿਲਸਫਾ ਗੋਟਣਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? ਅਜੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਮੂਲ ਸਤਾ ਦਾ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਬੋਧ ਨਹੀਂ, ਅਨਜਾਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਅਨਜਾਨਪਣੇ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਤੇ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਇੰਜ ਕਹੀਏ, ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮਹਾਨ ਗਿਆਨ ਮਹਾਨ ਅਗਿਆਨ ਤੇ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਧਾਰਸ਼ਿਲਾ ਅਗਿਆਨ ਹੈ, ਉੱਪਰ ਗਿਆਨ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬੇਮੈਨੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਤਨੇ ਚਿਰ ਤੱਕ ਧਰਮ ਦਾ ਗਿਆਨ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਏਥਿਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸੰਤ ਸੁਕਰਾਤ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਖੇਡਦਾ ਖੇਡਦਾ ਬਚਪਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅਕਸਰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਐਸਾ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੋ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਮੈਂ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਬੋਧ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਸੁਕਰਾਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਦ ਮੈਂ ਜਵਾਨ ਹੋਇਆ ਤੋ ਛੋਟੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਜੋ ਮੈਂ ਬੋਲ ਬੋਲਦਾ ਸੀ ਉਹ ਬੋਲ ਜਦ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਸਨ ਤੋ ਸ਼ਰਮ ਨਾਲ ਅੱਖਾਂ ਝੁਕ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਮੈਨੂੰ ਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਮਹਿਫਿਲ ਵਿਚ ਬੈਠ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਪਿਆ ਕੁਛ ਐਸਾ ਵੀ ਹੈ ਜੋ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਔਰ ਇਹੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਜ ਮੈਂ ਬੁੱਢਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਔਰ ਸਹੀ ਤੇ ਸੱਚੀ, ਮੈਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਜਿਸ ਜਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਗਿਆਨ ਆਖਿਆ ਉੱਥੇ ਅਗਿਆਨ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ। ਧਰਮ ਨੂੰ ਜਾਣੇ ਬਿਨਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਿਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਜਾਣੇ ਬਿਨਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਿਆ। ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰੇਤ ਦਾ ਢੇਰ ਸਾਬਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਗਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਿਆ, ਈਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਿਆ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਇਸ ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਖੋਲਿਆ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਭੁਜ ਬਲਬੀਰ ਬ੍ਰਹਮ ਸੁਖ ਸਾਗਰ ਗਰਗਰ ਪਰਤ ਗਹਿ ਲੇਹੋ ਅੰਗੁਰੀਆ, ਸਰਵਨ ਨ ਸੁਰਤ ਨੈਨ ਸੁੰਦਰ ਨਹੀਂ, ਆਰਤ ਦੁਆਰ ਰਟੁਤ ਪਿੰਗੁਰੀਆ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ ਹੈ ਤੇ ਸਹੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਧਾਰਮਿਕ ਜੀਵਨ, ਪਰ ਇਹ ਜੀਵਨ ਐਸਾ ਹੈ ਜੈਸੇ ਕਿਸੇ ਮਾਂ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿਚ ਉਸਦਾ ਬੱਚਾ, ਇੱਕ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚਾ। ਔਰ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਹੈ ਜਿਸਨੇ ਮੈਨੂੰ ਗੋਦ ਵਿਚ ਲਿਆ, ਅੱਜ ਜੰਮਿਆ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ, 10 ਦਿਨ ਦਾ, 15 ਦਿਨ ਦਾ, ਬੈਠਾ ਤੇ ਮਾਂ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿਚ ਹੈ, ਸੋ ਰਿਹਾ ਮਾਂ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿਚ, ਲੇਕਿਨ ਗੋਦੀ ਦਾ ਕੋਈ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ, ਕੁੱਖ ਦਾ ਕੋਈ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ। ਪਿਲਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਰਿਜ਼ਕ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਦੁੱਧ ਮਾਂ, ਪਰ ਰੋਜ਼ੀ ਦੇਹਿੰਦ ਦਾ ਇਸਨੂੰ ਕੋਈ ਬੋਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰਚਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਖਿਡਾ ਰਹੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ, ਪਰ ਇਹ ਹੱਥ ਕੀ ਨੇ? ਕੁਛ ਵੀ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ, ਕੁਛ ਵੀ ਬੋਧ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੇਖੀਏ ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬੋਧ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਹਾਂ, ਕਿਸ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਚਾਂ, ਕਿਸ ਦੀ ਗੋਦ ਦੇ ਚਾਂ, इतना भी बोध नहीं है। बालक बुद्ध अचेत, बिल्कुल बचपना। धन गुरु अर्जन देव जी महाराज फरमान कर देने, हे प्रभु, धर्म दी दुनिया च मेरा जन्म ते हो गया, पर जन्म ऐसा जैसे बच्चा मां दी गोद च है, कुछ भी बोध नहीं, मुंह दे जबान है, बोल नहीं सकता, हाथ है गे ने कुछ भी नहीं कर सकता, पैर है गे ने चल नहीं सकता, दिमाग है सोच नहीं सकता, कान है गे ने नहीं सुन सकता। इस बच्चे नु कुछ भी नहीं पता सामने जो गुफ्तगू हो रही है की है, दो बंदे जो कुछ बोल रहे ने की है, माता पिता जो कुछ बोल रहे ने की है, इन कुछ भी नहीं सुनाई दे रहा, इन कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा। जन्म होया तो बहुत सारे ना धार्मिक दुनिया दे जन्म ते हो जाता है, जन्म हो गया है, ये ऐसी किस तरह वेखांगे, मंदिर जान लग पे है, गुरुद्वारे जान लग पे है, पूजा पाठ करन लग पे है, बाणी पढ़न लग पे है, कथा कीर्तन सुनन लग पे है, अमृत वेले उठन लग पे है, कर्म कांड विच प्रवृत्त हो गया है। लेकिन इस सब कुछ की है, कुछ भी बोध नहीं, कुछ भी पता नहीं, इस तरह हो रहा है जैसे गोद देच बच्चा है, दूध पी रहा है, खिड़ाया जा रहा है हत्था देच, सुलाया जा रहा है गोद देच, पर उसकी अवस्था जो सब कुछ अचेतमयी चल रहा है, दूध पीना भी अचेतमयी चल रहा है, हत्था देच खेड़ना भी अचेतमयी चल रहा है, धार्मिक कर्म सारे दे सारे अचेत ते खड़े ने, सुचेत नहीं है, सावधान नहीं है। तो धन गुरु अर्जन देव जी महाराज फरमान कर देने, हे प्रभु, जन्म हो जाना ही काफी नहीं, जीवन भी ते मिलना चाहिए है। बच्चे दा जन्म हो गया है, इस कुल कोई सामाजिक जीवन नहीं, बच्चे दा जन्म हो गया है, इदे कुल कोई राजनीतिक जीवन नहीं, बच्चे दा जन्म हो गया है, इदे कुल कोई धार्मिक जीवन नहीं, कुछ भी नहीं है। जन्म होया है लेकिन जिसनों कहने ने जिंदगी ये नहीं है, जिसनों कहने ने जीवन ये नहीं है, ये तेज विकसित हो गया, जिस अज समा हुए लगेगा, लेकिन ऐसा देखने दे चाहे विकास हो जाता है सामाजिक जीवन का, रिश्तियां भी समझ आ जाती है, ये मेरी मां है, ये मेरा पिता है, ये मेरी बहन है, ये मेरा भरा है, अखां खुलदियां जा रही ने, समाजिक तल ते प्रौढ़ होंदा जा रहा है, जवान होंदा जा रहा है, रिश्तियां दी सोच समझ वद्दी जा रही है, ये मेरा मित्र है, ये मेरी पत्नी है, ये मेरा पड़ोसी है, लेकिन ये मेरा परमात्मा है, धार्मिक तौर ते अजे भी अनजान रह जांदा है, अजे भी मासूम रह जांदा है, अजे भी जो है बच्चा रह जांदा है। एक दिन राजनीतिक तल ते भी प्रौढ़ हो जांदा है, सियाणा हो जांदा है, और राजनीतिक लोगां दियां गल्लां दे उते उसका विश्वास नहीं बनता। अज तो 2500 साल पहले एथन दे प्रसिद्ध संत सुकरात ने कहा सी, और बड़े कीमती उसके पोल ने, अज ते सारी दुनिया पढ़ रही है, राजनीतिक ते अपराधी एको ही जहनीयत दे मालिक होंदे ने, एको ही मनोविरति दे मालिक होंदे ने, फर्क सिर्फ इतना है कि जिथे छोटा अपराध है अपराधी है, जिथे वड्डा अपराध है राजनीतिक है। सुकरात दे ए बोल कहना पेगा अमर बोल ने, और इस तरह दे पुरुष वक्ती बोल बोलते भी नहीं, अमर बोल बोलते ने, उन्हां दा संदेश वक्ती संदेश नहीं आउंदा, अमर संदेश आउंदा है, और उन्हां दे संदेश विच कदी मुर्दम ही नहीं आउंदी, क्योंकि अमर बोल होंदे ने, सदीवी बोल होंदे ने, और बहुत वड्डी जो है सच्चाई है। जद भी कोई राजनीति नूं समझण वाला हो जांदा है, राजनीतिक लोगां दे बोल हवा दे गुबारे दिखाई देंदे ने, और कुछ भी नहीं। तो एक दिन सियाणा हो जांदा है राजनीतिक तल ते, एक दिन इस नूं बोध हासिल हो जांदा है समाजिक तल ते, और इसे ही बोध देच जीवदिया जीवदिया अपनी जिंदगी दा अंत कर बैठदा एक दिन धार्मिक जीवन अपने शिखर नु छोंदा ही नहीं। कईयां दे अंदर ते ए जीवन पैदा ही नहीं आउंदा, कदी मंदिर गए ही नहीं, कदी मस्जिद दे च नमाज पढ़ी नहीं, कदी गुरु द्वारे दे च गुरु दी झलक वेखे ही नहीं, कदी कीर्तन सुनिया ही नहीं, कदी कथा दी तरफ कन ही नहीं कीते। ए उसदा कदी शौक ही नहीं बनया, जन्म ही नहीं होया। होया जन्म शरीरक, होया जन्म समाजक, होया जन्म राजनैतिक, धर्म दा ते अजे कईयां दे शरीर दे जन्म ही नहीं होया हुंदा। पर जे हो भी गया जन्म तो जीवन नहीं है। धन गुरु अर्जन देव जी महाराज फरमान कर रहे ने, हो गया जन्म लेकिन हे प्रभु अजे मैनू चलना ते आया ही नहीं, तेरा दामन पकड़ना ते आया ही नहीं, तेनू वेखना ते आया ही नहीं। अगर एक बच्चे नो मां मां नहीं दिखाई देंदी, प्यो पिता दे रूप च नहीं दिखाई देंदा, अचेत, अजे नवजायद है, अजे इसनु कुछ भी बोध नहीं, कुछ भी समझ नहीं, गुरु गुरु दे रूप च नहीं दिखाई देंदा, प्रभु प्रभु दे रूप च नहीं दिखाई देंदा, इसनु कहना पेगा धार्मिक तल ते अंधा है। कोई राजनीतिक तल ते भी अंधा हो सकता है, कोई समाजिक तल ते भी अंधा हो सकता है, पैन पैन नहीं दिखाई देती, पैन नाल भी गलत व्यवहार करता है, मां नाल भी रिश्ता इसका ठीक नहीं, पिता पिता नहीं दिखाई देता, इस नाल भी संबंध गलत ने, पत्नी पत्नी नहीं दिखाई देती, पति पति नहीं दिखाई देता, कई समाजिक तल ते भी अंधे होंगे, बरा बरा नहीं दिखाई देता, मित्र मित्र नहीं दिखाई देता, पुत्र पुत्र नहीं दिखाई देता, और इना नाल ऐसा अनाचार वो कर बैठते ने, बरा बरा नाल नहीं कर सकता, एक प्यो पुत्र दे नाल नहीं कर सकता, एक पति पत्नी नाल ऐसा व्यवहार नहीं कर सकता, पर एक पत्नी इस ढंग नाल पेश नहीं आ सकती। तो कई ते समाजिक तल ते भी अंधे होंदे ने, समाज दे रिश्ते भी नहीं दिखाई देते, कई राजनीतिक तल ते अंधे होंदे ने, लेकिन बहुते अंधे धार्मिक जगत दे च मिलणगे। इस वास्ते गुरु नानक ने ते ऐलानिया कह दिता, अंधे ए ना आखियन जिन मुख लोयण नाए, अंधे से ही नानका जो खसमो को थे जाए। धार्मिक दुनिया दे ते सारे ही सूरदास बने हुए ने, अखां बंद खुलिया ही नहीं, ना प्रभु दी झलक ना गुरु दी झलक, अजे धार्मिक तल दा जीवन प्रगट ही नहीं होया।
1: You're listening to KRPI 1550 Radio, Ferndale, Washington.
2: ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰਾ ਗਰੋਸਰੀ ਸਟੋਰ ਫਰੂਟੀ ਕਹਿਣਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਹੋਲਸੇਲ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹਨ। ਫਰੂਟੀ ਕਹਿਣਾ ਦੀ ਨਵੀਂ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਸਾਊਥ ਸਰੀ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ ਗਈ ਹੈ, 2990152 ਸਟਰੀਟ। ਇਸ ਹਫਤੇ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਹਨ 8 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ 14 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ, ਲਾਲ ਗੰਡੇ 25 ਪਾਉਂਡ ਦਾ ਬੈਗ 15.98 ਦਾ, ਅਤੇ 4 ਪਾਉਂਡ ਧੋਤੀ ਹੋਈ ਉਰਦ ਦਾਲ ਅਤੇ ਮੂੰਗ ਦਾਲ ਲਵੋ 4.99 ਦਾ ਬੈਗ। ਫਰੂਟੀ ਕਹਿਣਾ ਵਿਸ਼ਿਸ ਯੂ ਹੈਪੀ ਥੈਂਕਸਗਿਵਿੰਗ।
3: फैमिली केयर फार्मेसी
4: पूरे बीसी विच होम्योपैथिक दवाइयां च नंबर 1।
3: इना कोलो तुसी हर तरह दे विटामिन सप्लीमेंट्स, हर्बल्स अते होम्योपैथिक प्रोडक्ट्स ले सकदे हो।
4: हर तरह दे नेचुरल हेल्थ प्रोडक्ट्स, कंप्रेशन स्टॉकिंग्स, ऑर्थोपी प्रोडक्ट्स भी ले सकदे हो।
3: हुन मोबिलिटी एड रेंट जां बाय भी कर सकदे हो।
4: फ्री प्लेस्टर पैकिंग ते डिलीवरी दे नाल-नाल हर तरह दे गवर्नमेंट ते प्राइवेट क्लेम्स भी लैंदे हन।
5: 3 लोकेशंस टू सर्व यू, सरी डेल्टा एंड वाइट रॉक,
3: जां कॉल किरण एट 604-581-1900।
6: जिंदगी दे हिसाब किताब वांग बिजनेस दा हिसाब किताब भी बहुत औखा है। पहला मेनू भी यही लगदा सी, पर जदो मेनू बाद अकाउंटिंग दे जसवीर सिंह बाद होरां बारे पता लगा, ओदो तो मैं टेंशन फ्री हो गया। जिन्हां नू है 30 साल तो भी वध दा तजुर्बा, टैक्स पेपर फिल करने होन, बुक कीपिंग होवे या किसे भी तरह दा फॉर्म भरवाना होवे, तां अज ही संपर्क करो बाद अकाउंटिंग दे जसवीर सिंह बाद होरां नू। कॉल 604-325-8370 604-325-8370।
7: Need help navigating our ever-changing real estate market? Gerdale Baud of RE/MAX Real Estate Services is among the top 1% of all Lower Mainland realtors. Whether thinking of buying or selling residential properties, commercial properties, or farmland, call the agent with 30 years of experience to help you. Gerdale Baud, your realtor for life. Call Dale at 604-303-7653 or go online at GerdaleBaudGroup.com.